नमस्कार, FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज दिन शुक्रवार है, शक संबत 1948 दे ज्येष्ठ महीने दी 15 तारीख। तदनुसार ईस्वी सन 2026 दे जून महीने दी आज 5 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 ते 42 सैकेंड होए ने। साढ़े अज दे प्रोग्राम हुण शुरू होंदे ने ते असी अपने सारे ही स्रोतियां दा इस सभा दे विच बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

आकाशवाणी एफ एम रेनबो ते हुण पेश है साडे अज दे प्रसारित होण वाले प्रोग्राम ते उहनां दा प्रसारण समां। हुण तों कुछ कु पलां दे इंतजार ते तुसी सुणोगे भगती संगीत दा प्रोग्राम वंदना। एफ एम न्यूज़ हेडलाइनस सवेरे 7 बजे और उस तो ठीक बाद जानकारी ते मनोरंजन नाल भरपूर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर पेश करांगे जो चलेगा 8:30 बजे तक। सवेरे 8:30 बजे पंजाबी खबरां सुन पाऊंगे। सवेरे 8:40 ते साडा खास सैगमेंट जिस विच नॉन स्टॉप बैक टू बैक पंजाबी बीट सोंग्स इंजॉय करूंगे अड्डी टप्पा।

तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। वारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। भगत कबीर जी ने सानू दस्या है कि परमात्मा दा नाम लैंदे उन्हूं ये कहंदे कि अगर जीवात्मा हर वेले तू है कहंदी है ते ऐदा कर दे इंसान दा हंकार खत्म हो जाता है ते हौली हौली इंसान पूरी तरह परमात्मा नू समर्पित हो जाता है।

जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। प्रभु दा नाम उस दीपक दी तरह हुंदा है जो साडे मन दे अंदर दा हनेरा दूर कर दिंदा है ते साडे सारियां मुश्किलां नूं भी ओ हर लैंदा है।

0: माया मोई न मन मुवा मर मर गया शरीर आसा तृष्णा ना मुई यों कहे दास कबीर। कबीर जी कहते ने कि इंसान ये प्राणी दी ना माया मरदी है तो ना मन मरदा है पर ये शरीर बार बार मरदा है। अलग अलग जूना दे विच पटकन तो बाद भी इंसान दी आशा तृष्णा नहीं मरदी, वह हमेशा बनी रहती है। इसनु मारन दा एक ही तरीका है जिसे अपने मन दे विच परमात्मा नु वसा लईए।
1: ओम शुक्लां भरतरं विष्णुं शशिवर्णं च

रेडियो रेनबो दी कड़ी ते सवेर दे 7 बज रहे ने ते वेला हो गया एफएम न्यूज़ हेडलाइंस दा जो के तुसी सुनोगे बिल्कुल लाइव। पेश नहीं एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा प्रगटाया है कि पहली विश्व योग चैंपियनशिप योगासन नू एक आलमी खेड पछाण देगी ते नौजवानों लई कई तरह के मौके खोलेगी। प्रधानमंत्री ने नवी दिल्ली विच वेनजुएला दे कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स नाल गलबात की। दोवां नेतावां ने समुचे दुवल्ले संबंधां की समीक्षा की। शहरी हवाबाजी मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार वालों हवाबाजी ईंधन दीआं कीमतां नूं स्थिर करन लई बजट सहायता प्रदान करन दा फैसला आम जनता दे हित विच लिया गया है। सरकार ने एक बार फिर नागरिकां नूं ऊर्जा की बचत करन, LPG की घबराहट च जरूरत तो वध खरीदारी जां बुकिंग ना करन अते PNG इंडक्शन स्टोव अते विकल्पिक ईंधणां की वरतों करन की अपील की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ते नितिन गडकरी वल्लों भारत की पहली फ्लैक्स फ्यूल मुसाफिर कार लॉन्च की गई। अज विश्व चुगिरदा दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने एशियन रिले एथलैटिक्स चैंपियनशिप 2027 दी तैयारियां अते बुनियादी ढांचे दी योजनावां दा जायजा लिया। पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों वालों आप उदरे ढंग फीसा विच वाधे की रोक लई कानून का खरड़ा बनाने के हुक्म।

गुलशन में भंवरों का फेरा हो गया, गुलशन में भंवरों का फेरा हो गया, पूरब में देखिए सूरज का डेरा हो गया। मुस्कान के साथ आंखें खोलो प्यारे, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलो तो प्यारे, एक बार फिर से देखो प्यारा सा सवेरा हो गया। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग पॉजिटिव हैप्पी फ्राइडे मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वैसे मॉर्निंग दे विच ते वार्म वेलकम करना हुंदा है, मौसम चाहे बाहर जिन्ना मर्जी हॉट और वार्म हो भी, लेकिन वेलकम तो मैं वार्म ही करूंगी ना। सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड तुहाडा सारयां दा वार्म वेलकम कर दिया, प्यारा जा वेलकम कर दिया इस प्यारी जी फिलहाल ते ठंडी ठंडी सवेर है। सो नवी सवेर नवियां उम्मीदां ते नवी पॉजिटिविटी ते एक फ्रेश स्माइल दे नाल तुसी सुन रहे हो तुहाडा फेवरेट वाला मॉर्निंग कंपेनियन शो गुड मॉर्निंग जलंधर, मेरे नाल यानी कि तुहाडी दोस्त आरजे पूजा टोहानी दे नाल। मैं हाँ तुहाडी अपनी तुहाडी दिलां दी आवाज नू सुनन समझन वाली प्यारी जी कुड़ी पूजा टोहानी। So coming live with smiles, stories, soulful vibes and lots of positivity. यानी कि तुहाडे चेहरे ते बिल्कुल ऐदां दी ऐसे ही तरह दी स्माइल लेके आउण दे लई आ चुकी हां मैं एफएम रेनबो दे स्टूडियो च वैसे ते सवेर दे 5:30 बजे दी, लेकिन फिलहाल टाइम हो चुका है 7:05 और पूरे 36 सेकेंड, 37-38 सेकेंड्स ते फटाफट निकल जांदे ने और ऐदां ही जिंदगी हंसदे खेडदे मुस्कुराउंदे निकल जांदी है और उदों ज्यादा आसानी दे नाल जदों साथ होवे प्यारा जिहा एफएम रेनबो वर्गा। सो एफएम रेनबो दा साथ है तुहाडे वर्गे लिसनर्स दे नाल साडा बणदा है बहुत खास। सो इसे करके हमेशा हर बार सारयां दा वारी वारी करदी हुंदी हां मैं वेलकम, जिवें कि तुसीं ट्यून कीता होया 102.7 एफएम रेनबो जलंधर नूं और 103.6 वाले 103.6 मेगाहर्ट्ज़ वाले सानू आकाशवाणी अमृतसर के स्रोतियां का भी निघा स्वागत कर चुके हैं जी। सवेर के 6:30 बजे वो इस वेले सुन रहे हैं सारे ही सानू लाइव, लेकिन इसे फ्रीकुएंसी के जरिए सरहद पार तो भी सानू प्यारे प्यारे लिसनर्स जिन्होंने बेसब्री के नाल रहिंदा है जी एफ एम रेनबो नूं सुनने का इंतजार, वो भी ट्यून कर चुके हैं और किवें भूल सकदी हाँ उन्होंने जिन्होंने साड़ी ऐप न्यूज़ ऑन AIR के जरिए सानू बिल्कुल लाइव ट्यून किया हो। थैंक यू जी तुहाडा सारयां दा। और अज 5 जून फ्राइडे मॉर्निंग, बहुत सारिया चीज़ा अज मेरे पिटारे दे विच हैगियां ने, वारी वारी आपां उन्हां सारियां गल्लां ते गल करांगे, सारियां गल्लां तुहानू सुनाऊंगी मैं। चाह दा कप हाथ च होवेगा, ऑफिस की तुहाडी तैयारी होवेगी, स्कूल कॉलेज की हसल नहीं होएगी क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं। तुसीं सोच रहे होंगे शायद तुहाडी वारी भी आए ना, तुहाडियां छुट्टियां आ या फिर हुण घर दियां जिम्मेवारियां। डोंट वरी जी, मैं हैगी ना, वुज इज हियर टू मेक योर मॉर्निंग ब्राइटर लाइटर।

and happier. So filhal, pyari ji, kudi, yani ke main te aa chuki haan studio vich, pyariyan pyariyan gallan di shuruaat kar chuki haan main tuhade naal, lekin pyari ji, show da, jis da tuhanu besabri de naal hunda intezaar, yani ke good morning, Jalandhar da, kar de haan shuruaat jo chalega 8:30 baje tak. 8:30 baje sunoge tusi khabran 10 minute de layi, 8:40 te नॉनस्टॉप पंजाबी बीट म्यूजिक यानी कि तुहाड़ी एक्सरसाइज नू ध्यान च रखते हुए मैं चलाऊंगी वधिया वधिया जे बीट सॉन्ग्स ताकि तुहाड़ा वर्कआउट सैशन उन्हें 20 मिनटां दे विच मैं कंप्लीट करवा दवा. सो 9 बजे तक अड्डी टप्पा सैगमेंट, 9 बजे मेरे तो न्यूज हेडलाइंस सुनूंगी और उस तो ठीक बाद तुहाड़ा ते मेरा फेवरेट वाला शो दिल अपना पंजाबी जिस विच तुसी वी व्हाट्सएप ते ऑडियो मैसेजेस भेज के मेरे ना कर सकते हो अपने विचार सांझे, दिल दियां गल्लां सांझियां ते दे सकते हो मैनू मेरे प्रोग्राम दा लाइव फीडबैक. इंतजार रहेगा जी मैनू तुहाड़े मैसेजेस दा. लेकिन फिलहाल बैक टू द पॉइंट, टाइम हो गया है प्रोग्राम दी प्यारी जी शुरुआत करन दा. बड़ा खास दिन है अज, फ्राइडे तो हैगा ही हैगा, होर भी बड़ा कुछ है अज दे खास दिन दे विच. गाना सुनो फिर दस दी हाँ, गाने नूं सुनना नहीं है फील करना है, ते वापस आके फिर मैं दसूंगी अज दा दिन किवें खास है. वैसे तो जदों मैं आई जानी हूँ दिन खास हो ही जाते, लेकिन अज सुपर स्पेशल डे है. सो दे लई बहुत ही प्यारा जिहा गीत आ रहा है रेडियो सेट ते. सो स्टे ट्यून ऑन द ऑन एफएम रेनबो पूजा टोहानी यानी कि मेरे नाल.

लो जी, मेरी मॉर्निंग गुड कर दीती है मेरे कंप्यूटर साहब ने। और वैसे तो हुण तक तो तुहानू पता चल ही गया होगा कि जो तो मैं आनी हाँ, सब तो पहला सरप्राइज से मैनू मेरे ये प्यारे प्यारे दो साथी दिंदे ने हैंग होके। लेकिन मैं तुहानू तो हैंग नहीं होन देना, ना आप ट्रिप होन देना, क्योंकि मैं हैगी है ना तुहाड़ा साथ देन नू, तुहानू सांभण नू। सो वेलकम बैक आफ्टर दिस सोलफुल ट्रैक एंड वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक। हुणे तुसीं इंजॉय कीता ये हसी वादियां, महसूस होया ना? बस इसी करके मैं तुहानू कहा सी कि FM रेनबो इत्थे गल्लां और म्यूजिक आप सुनते थोड़ी हाँ, आप महसूस करते हैं। मेरी एटलीस्ट यही ट्राई होंगी है कि तुहानू हर गल, हर शब्द, हर गीत फील होवे। सो इदां दा ही ये रिश्ता है अपना। फिलहाल इस तो मैं याद आया कि मैं तुहानू कहा सी अज का दिन बहुत खास है। कोई गल नहीं, मैं सरप्राइज रिवील कर दूंगी। काली बड़े पै जाने तुसी, कोई गल नहीं, लाइफ नू कॉम्प्लीकेट ना करा करो, डोंट कॉम्प्लीकेट लाइफ, क्योंकि असं इतने हमेशा थोड़ी रहना है। लेकिन इंजॉय करना चाहिए लाइफ नू, जो प्रेजेंट मूमेंट है, और पॉजिटिविटी, हैप्पी मूमेंट्स लभ लेने चाहिए ने। अच्छा, अगर नहीं है तो क्रिएट कर लेने चाहिए ने, इन्ना तो कर सकते ना आप। और चेहरे पर एक प्यारी जी स्माइल लेके आनी चाहिए है। नहीं आती, कोई गल नहीं, लैके आनी चाहिए, मैं तुहानू कहा। सो इदां दे मूमेंट्स लभो, इदां दा साथ लभो जो तुहानू खुश करता है, दिलों खुश करता है, तुहाड़ी रूह नू सुकून दिंदा है। वैसे हर मॉर्निंग मैं दस्या कि नवी शुरुआत लैके आउंदी है, नवे मौके लैके आउंदी है, है ना? हमेशा ही आपां गल करदे आं। और एक चीज़ होर मैं हमेशा कहनी हाँ कि ग्रैटिट्यूड, यानी कि परमात्मा का शुकराना करया करो हर चीज़ दे लई, हर सवेर दे लई, हर दोपहर दे लई, हर शाम दे लई, प्यारी जी शाम दे लई, और हर रात दे लई, क्योंकि रात आउंदी है। सारा दिन सानू बड़ा कुछ सिखा के जांदा, रात नू असीं थोड़ा रिफलैक्ट कर सकते हैं किहड़ी किहड़ी चीज़ां अज दे दिन दे विच होईआं, किहड़ियां गलतियां कीतियां, किहड़े सुधार कीते जा सकते ने, और गलतियां तो असीं सीखदे आ ना, एक्सपीरियंसिस उही मुड़ के साडी लाइफ दे इदां दे माइलस्टोन्स बनदे ने, फिर अगे जाके असीं बाकियां नू ज्ञान दे पाउने आ। इदां ना करो, इदां करिया करो, हुंदा ना, बड़ी वारी होया होएगा। सो इन्हां नू ही एक्सपीरियंसिस कहिंदे ने, और लाइफ ये सानू रोज मौके दिंदी है, और एक मौका होर दिंदी है। वो मौका ये है, आसपास देखो साथ कौन दिंदा है। जरूरी थोड़ी है कि अपने साथ दिंदे ने, कई बारी अपने नहीं बेगाने भी साथ दिंदे ने। सो जिहड़े बेगाने साथ दिंदे ने वो अपने ही हो जांदे ने। बहुत बारी असीं लोगों नूं मिलदे नहीं आ, जानदे भी नहीं हुंदे, लेकिन एक अनजाना जिहा रिश्ता उहनां दे नाल महसूस हुंदा है, किसी भी तरह ना तुहाड़ा ते मेरा। नहीं देखिया तुसी ना मैनू कदे, ना मैं तुहानू देखिया, पर है ना अपना रिश्ता, हुंदा तुहानू सारयां नू मेरे नाल गल करन दा, मेरियां गल्लां सुनन दा बेसब्री दे नाल इंतजार। बस, और नाल ही आ जांदी आ हुणी जिहड़ी स्माइल आई है चेहरे ते, इहनू ही मेनटेन रखना है। और गाना सुनने, आपां गाना सुन के जल्दी दे नाल वापस आना है, तो फिर आपां गल करांगे अज दे दिन दे विच खास की है। दसूंगी जल्दी का दी है। पूजा तो हानी तो हाड़े नाल FM रेनबो ते। गुड मॉर्निंग।

After this soulful track, or tune kita hai je tusi FM Rainbow nu mere naal, yani ki Pooja Tohani de naal. Aur enjoy kar rahe aap, bada hi pyara jo show, Good Morning Jalandhar. हां जी, ये मेरे स्टूडियो दे विच्चों ही आवाज आ रही है। मैं सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा

Welcome back once again. After this beautiful track, jada assi sunde I think prakriti de sare rangan nu mehsoos kar liya hoga. Har panchi nu khaas kar ke koel ki kuh kuh suniya si na. Miss nahi kita na. Very good. वैसे मैंने पता है, वैसे listeners तुसी अच्छे हो, loyal हो and consistent हो. इसी करके FM Rainbow दे listeners the best ने, क्योंकि मेरी सारी गल्ला बड़े ध्यान दे नाल सुनदे भी ने ते मनदे भी ने. सो गल कर रहे हैं आपा गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ते. और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ते जैसी गल कर रहे हैं ते एक चीज गल करनी जरूरी है. केड़ी? हाँ जी हाँ जी, आ जिहड़ियां आवाज़ां आ रही ने ना पिछे, जो सवेर वेले पंछियां दी आवाज़ आउंदी है किन्ना सुकून मिलता है दिल नूं, रूह नूं, कन्नां नूं, दिमाग एकदम शांत हो जांदा ना. सो जदों पहली बरसात आउंदी है, पहली बरसात दी खुशबू मिट्टी चों उठदी है, ओ सानू किते होरों महसूस हुंदी है. जिथे मर्जी चले जाइए हुंदी है, नहीं ना हुंदी. जदों ठंडी हवा गर्मी दे विच साडे चेहरे नूं छू के निकल जाती है, ये सब कुदरत दे तोहफे ने साडे लई. पर सवाल ये है कि की असी भी कुदरत नूं कुछ वापस दे रहे हैं? गल असी ये कर ली कि असी की कुछ कर रहे हैं ते कुदरत साडे लई की करदी है. असी कुछ कर रहे हैं? सोचो सोचो की कर रहे हैं, सिर्फ खराब. तो फिर ये जड़ा सवाल उसका जवाब आपा देता, हुण असी इसनूं ठीक किवें करना है. सो अज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ते आओ एक छोटा जिहा वादा असी अपने आप ना करिए, एक दूसरे ना करिए, कि हर साल घट्टो घट ज़्यादा ना असी एक या दो रुख जरूर लगाओ. ज़्यादा तो कह नहीं रहे, सारे जिन्हें भी लिसनर्स फिलहाल सुन रहे ने, एक या दो रुख जरूर लगाओ और उन्होंने देखभाल जरूर करो. और एक होर वादा कि प्लास्टिक घट वरतो, जिथे हो सके जिहड़े जूट बैग्स मिलते हैं या कपड़े दे बने हुए बैग मिलते हैं या थैले मिलते हैं उन्हों का इस्तेमाल करो. सिंगल यूज प्लास्टिक नू टोटल बाय बाय कर दिओ. पानी की कदर करो, पानी की कदर करांगे तां कुदरत साडी कदर करेगी. पानी नू बिल्कुल अजाई जिहड़ा असी वेस्ट करते हैं टोटली बंद कर दिओ. और अगर कोई देखदा है वेस्ट करना तो प्लीज़ थोड़ा जिहा इनिशिएटिव लो और उसनू समझाओ. समझाउणा साडा फर्ज है, मनना ना मनना उसका करम है, पर एटलीस्ट इग्नोर ना करो. और जिन्हें इस कुदरत दे जीव जंतु पशु पंछी ने गर्मी बहुत ज़्यादा, उन्होंने पीण के लिए पानी का इंतजाम अपने घर के बार, मोहल्ले के बार या शहर के जिथे तो काम तो घर तो

अगर इस गाने दी तुसी वीडियो देखी हाँ तो तुसी आई एम श्योर समझ गए होंगे कि मैं ये गाना क्यों चलाया। फितूर अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज़ विच हुणे आपां इंजॉय कीता जदों आपां गल कर रहे सी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इलीगल फिशिंग दी। की है दिन मैं दसदी हाँ तुहानू। गैर कानूनी मच्छी फड़न ते रोकथाम दे लई ए दिन मनाया जांदा है पूरे विश्व दे विच। हुण तुसी सोचोगे इन्नी निक्की जी गल है, हैं ओदे दे मतलब मैं

0: सर तुहानू आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो आप एक बारी फिर तो ट्राई कर दें, कनेक्ट कर दें उन्होंने नाल जो अज के साड़े खास मेहमान ने। सो गल करांगे हरमिंदर पाल सिंह जी दे नाल वर्ल्ड एनवायरमेंट डे दे। हेलो हेलो मैनू लगता कि तुहाडे दिल दे विच जिहड़े अरमान है ना कि गाना तुहानू मैं सुना देवां, गाना तो मैं तुहानू सुनाऊंगी, लेकिन उस तो पहला बई मेरे कोल भी एक लिस्ट हैगी है और लिस्ट नू अगर मैं फॉलो करां तो लिस्ट फॉलो करदे करदे मैं पहुँचदी हाँ एक छोटी जी ब्रेक दे वल। सो जाना कितने नहीं है, तुसीं तुहाडे लई एक छोटी जी ब्रेक इंजॉय करो, आई मीन सुनो, तो वापस आके ट्राई करदे हां एक बार फिर तो कनैक्ट करन दी।
1: सुनो की तुसी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बारे सुनिया है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इस नाल तोड़ा कर सूर्य घर बन जाता है, यानी तोड़ा बिजली दा बिल जीरो। होर पैदा हुई कोई भी वादू बिजली ग्रिड नू बेच के पैसे भी कमा सकते हो। ता तुसी बैठे क्यों हो, हुणे रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in ते।

आई थिंक ये मेरी फीलिंग्स और मेरे इमोशंस जो फिल्म रेनबो दे रही है, ओ इस गाने ने की थी ने एक्सप्लेन। वेलकम बैक पूजा टोहानी दिना, गुड मॉर्निंग जलंधर, एंजॉय कर रहे हो तुसी फिलहाल 102.7 ते 103.6 मैं दस दी हूँ तो रेगिस्तान तो ही है और ये है जी जिन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट जर्नी काम किया, मतलब एक तरीके ना कह लो कि वर्ड नहीं है जी मेरे को उन्होंने, मतलब उन्होंने तारीफ करने के लिए हैट्स ऑफ ही निकलेगा, सल्यूट होएगा दिल तो जो मैं उन्होंने कहानी तुम्हें सुनाऊंगी। गल दसन जा रही हाँ राणा राम बिश्नोई जी की, जिन्होंने रेगिस्तान के 27,000 पेड़ लगा दिते ने हुण तक, उम्र उन्हां दी 78 साल। पिछले 50 साल तो रेगिस्तान दे विच इदां दे पेड़ लगा रहे ने जिहड़े कि सोच भी नहीं सकते आपां कि पॉसीबल है, लेकिन सिर्फ एक मटका यूज़ करके, मतलब मटके दे राहीं उह पाणी लैके ट्रैवल करदे ने, रेगिस्तान दी गल कर रही हां। और नीम, रोहेड़ा, बबूल वर्गे पेड़ इन्हां ने रेगिस्तान दे विच उगा के दिखा दे दित्ते। वो कहते हैं कि ये सिर्फ पेड़ नहीं है, मैं नाम नहीं करना चाहता सीगा कि कोई पौधा लगा देता या कोई पेड़ लगा देता, उन्होंने फायदा भी होना चाहिए है। इन्नी मतलब तपती गर्मी दे विच और रोज़ाना 3 to 4 किलोमीटर पैदल चलते ने, कड़े उन्होंने सिर ते चुके होंगे ने और इन्हां आप अपने हत्थां नाल लगाए हुए पेड़ों नू पौद्यां नू उह पाणी दिंदे ने। उम्र दे इस पड़ाव ते भी वह अपने नाल ए बाल्टी और सिर ते कड़ा चक के पानी दा वह कैरी करदे ने, लैके जांदे ने और जिथे भी उन्हां नू दिखदा है कि पेड़ नू जरूरत है पानी दी, उत्थे फिर उस पेड़ नू पानी दिंदे ने। ते मैनूं इह लगदा कि अगर इदां दे मकसद दे विच असी उन्हां दा साथ दईए, मतलब जिते सानूं इदां लगे कि कोई इदां दा कुछ अलग या डिफरेंट काम कर रहा है, असीं इंस्पायर क्यों नहीं हो पाते, क्यों असीं लेजी जे बन के अख जी फेर के अगे चल जाने हैं, इदां दा कोई काम असीं भी कर सकते हैं ना। गुड डीड करन दे नाल ही काम होंदे ने, सोचण दे नाल कुछ नहीं होंदा। अगर वह 3 to 4 किलोमीटर रोज़ाना पैदल 78 साल की उम्र के चल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुदरत के प्रति उन्होंने प्यार में ये चीज़ा दर्शाउंदियां ने, अपना फायदा उन्होंने कोई नहीं है, असी क्यों नहीं कर सकते। तो जिथे भी उन्होंने लगता है कि पेड़ लगाने की जरूरत है, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है, तो वह पौधा भी लगाते हैं और फिर रोज़ उसकी देखभाल के लिए उसनों पानी देने जाते हैं और एवं करके पिछले 50 साल तो उन्होंने 27,000 पेड़ उगा दिते ने रेगिस्तान के। So hats off to Rana Ram.

0: ये साथ मेरी आवाज है और ये गाना है।
1: ओके, एक गाना कितना लगा मैंने दस दियो, लेकिन फिलहाल गाने तो पहला एक गल भी तो हो जाए। गर्मी है, सो गर्मी में तुम सोच रहे होंगे कि आज पूजा सिर्फ गल्लां करके चल गई है, कुछ नहीं, साड़ी टमी दे लई उसने कोई भी सानू रेसिपी देती। ऐदा हो सकता है, कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन आज नहीं होएगा। क्विक रेसिपी गर्मी नू देखते हुए, सो करना की है तुसी पहले नोट करने ने इनग्रीडियंट्स, फिर तुसी बनानी है, तो फिर मैंने देना है फीडबैक। सो आज दी रेसिपी है क्यूकम्बर छाछ, खीरे दी लस्सी। नहीं, पंजाबी दे विच मजा नहीं ना आया, हसना नहीं है तुसी मेरी रेसिपी ते, पहले ट्राई करनी है, फिर उसे एक सिप लैके मैंने फीडबैक जरूर दियो। क्विकली करना की है, घर दे विच दही होएगा हैगा ना, ओके ओनू लेना है, मिक्सी दे विच पाउणा है, फिर उस विच थोड़ी जी पत्तियां तुसी पुदीने दी पा देनियां ने, और एक मीडियम साइज का खीरा वो भी पा देना है, थोड़े जे पत्ते करी पत्ते दे पा सकते हो, अगर थोड़ी जी स्पाइसी चाहिए है तो एक बाकी थोड़े टेस्ट पर डिपेंड करता है हरी मिर्च किन्नी क चाहिए है। भुन्ने हुए जीरे का पाउडर पा लेना है, थोड़ा जहा काला नमक पा लेना है, सेंधा नमक पा लेना है, काफ़ी सारी आइस पा लेनी है, बाद विच आइस पानी है, ओके इन सारी चीज़ों को मिक्सी दे विच पा के ग्राइंड ग्राइंड ग्राइंड और मिक्स मिक्स मिक्स कर लेना है चंगी तरह, ओके मिक्सचर रेडी हो जाएगा, ग्लास दे विच पाउणा है, काफ़ी सारी आइस पानी है, सिप सिप करके पीना है, तो फिर मेरा नाम लैके याद करना है मैनू कि किदा की लगी है रेसिपी, तो दसना भी है जरूर तुम मैनू। फिलहाल इसी नोट पर गुड मॉर्निंग जलंधर इतने ही वाइंड अप कर रही हैं, जा मैं कितने नहीं रही, हजे भी सफर अपना 10 बजे तक है, सिर्फ गुड मॉर्निंग जलंधर वाइंड अप कर रही हैं, लेकिन लास्ट ट्रैक तो हनु जरूर सुनाऊंगी, 8:30 बजे सुनोगे तुसी खबर 8:40 तो 9 आडी टप्पा, सो स्टे ट्यून्ड, कितने भी नहीं जाना तुसी, एदा ही बैठे रहना, नचते रहना, टपते रहना, जो काम करते करते रहना, पर नाल दी नाल रेडियो नू हलाना नहीं है, चैनल चेंज नहीं करना, इट्स नॉट अलाउड, and enjoy the last track of good morning jalandhar pooja tohani tohani naal।

नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक वंस अगेन। टाइम हो चुका है रेडियो रेनबो दी घड़ी ते 8:40 और पूरे 55 सेकेंड, यानी कि टाइम हो गया है तुहाडे फेवरेट वाले सैगमेंट का, जिस विच तुसी नॉन स्टॉप पंजाबी बीट म्यूजिक, बीट सॉन्ग्स इंजॉय करदे हो, यानी कि अड्डी टप्पा दा। सो बिना देर किते और बिना मेरी इंटरप्शन तो इंजॉय करोगे ठीक 9 बजे तक अड्डी टप्पा। तो बिना देर किते प्ले करन जा रही हैं तुहाडा फेवरेट वाले सॉन्ग नू। आई एम श्योर तुहानू ये गीत जरूर पसंद आएगा। स्टे ट्यून्ड and enjoy this track.

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 प्राप्त की जा सकती है।

म्यूजिकली योर्स एंड ओनली योर्स, और इसी वजह करके लो जी फिर आ चुके हैं दोबारा तो हाड़े ना गल्ला बातें करन, क्योंकि हजे बाय बाय करन तो मानते है ही नहीं सी हजे ते। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वंस अगेन

चांद लगदी है कि नहीं, ये तो पता नहीं, चांद रात नू आंदा है, फिलहाल सूरज आया हुआ है। तो सूरज किन्नी तपिश रख रहा है, ऐसे बहुत ज्यादा तो नहीं है, ऐसे ठीक ही ठीक है, मध्यम मध्यम जो मौसम रखा हुआ। वैसे मैं तो हानू याद कहनी हूँ, आने तो पहले तो थोड़ा जहा मौसम वधिया करना जरूरी है ना। ठंडक वाली कुड़ी हूँ मैं, तो ठंडक पहुंचा दिया दिलों नू, तो बाकी तुसी मैनु दस दियो तुहाडी सोच की है एनवायरमेंट नू लैके। अच्छा नहीं, मैं अपने बारे नहीं पूछ रही, मैं सिर्फ एनवायरमेंट बारे पूछ रही। मैं तो पता ही है मैं तुहाडे नाल लड़दी रहनी हाँ, और मेरी तुहाडे नाल लड़ाई हो जाती, मेरे तो डांट भी पै जाती है तुहानू, है ना है ना है ना। कोई गल नहीं, प्यार दे विच सब कुछ चलता है, लेकिन फिलहाल चलना है तुहाडा मैसेज, तो वह तुम मैंने भेजना है 9855 10 10 27 से जल्दी दे, यानी कि 9855101027 से, और करनी है मेरे ना पर्यावरण बचाने की गल। मेरे दिमाग दे विच वैसे बड़ी चीज़ा आ रही हैं यार, अगर तुम कहो तो मैं सुना देव, मैं लग रहा है तुम यस कर रहे हो। चलो फिर जे इदा की गल है, तो 2-4 गल्ला जो मेरे दिमाग च आ रही है मैं कर ही दिनी हूँ। अज असी गल की मच्छियां नू जिहड़ा आपां इलीगल मच्छी फड़न का काम है वह किस तरीके दे नाल समुंदर दे समुंदरी जीवन पर असर पाउंदा है। भाई देखो, इस कुदरत दे विच जिन्ने भी, याद है हमेशा मैं कहनी हुंनी, जिन्ने भी जीव ने वो जरूरी ने, ये धरती साढ़े तो ज़्यादा इन्हों सारे जीवों की है। अगर इन्हें इम्बैलेंस आएगा ना, तो ये जो सा प्लैनट है ये खराब है, ये रहन योग बनेगा नहीं, बचेगा नहीं। सो इस दे लई जरूरत है हर चीज़ नू सेफ रखण दी। हर चीज़ दे विच साड़ी हवा है, साड़ा पानी है, ये मिट्टी है, जरूरत तो ज़्यादा खोदनी भी भूखोर की समस्या लैके आती है, हड़ां की समस्या लैके आती है, पेड़ों की ज़्यादा कटाई है जिहड़ी, वो साड़ा पर्यावरण खराब करती है। तुसी की सोचते हो, है ना, कुदरत है तो बहुत अद्भुत, लेकिन असी इन्हें दिन ब दिन खराब कर रहे हैं। सो साडे कम्मा करके एक इदां दा खतरा है जिहड़ा चुपचाप खराब कर रहे हैं अंदरों अंदरी। कितने जंगलों में अग लगी जा रही है, वह कंट्रोल च नहीं आ रही, कितने भूकंप आई जा रहे हैं जरूरत तो ज़्यादा। सो असी बेकसूर जीवों जदों तंग करते हैं, तुहानू की लगता कि सानू ये सारिया चीज़ों का भुगतान नहीं करना पेगा? करना पेगा ऑबवियसली, तो जदों फिर साड़ी वारी आएगी सा तो भी देखा नहीं जाएगा। सो टाइम रेंदे अगर बचा कर लिया जाए तो बैटर नहीं है। हर पेड़ कहिंदे इक कविता है, इस धरती ते हर पेड़ एक कविता है जो धरती आसमान ते लिखदी है। इस कुदरत दे जिन्ने भी ये सारे नियामता ने ना, मैनू कदी कदी ये फील होंदा कि ये शायरी है कुदरत कर दी। एंड रिमेंबर, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आर प्लैनेट इज द बिलीफ दैट समवन एल्स विल सेव इट। यानी कि सब तो वड्डा असीं ये कह सकते हैं कि डर या मतलब गलत सोच ही पता की है, कोई ना कोई बचा ही लेगा, कर ही लेगा ये काम। वाई नॉट अस, असीं क्यों नहीं, दूसरे दे भरोसे क्यों? सो लेट्स बी दैट समवन। अज असीं अपने आप ना वादा करिए कि अज असीं उही समवन बनांगे जो इस प्लैनेट नू, इस वातावरण नू, इस धरती नू, इस पौन पानी नू बचाउण लई थोड़ा थोड़ा हर रोज़ अपना योगदान देगा। पानी

0: जी बिल्कुल
1: अपनी औकात नालों ज्यादा धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं,
0: जी जी
1: पर
0: जी
1: आप जानते हैं कि नाल किसी ने नहीं जाना है। प्यार मोहब्बत और अपनी जी इज्जत नाल किया हुआ काम वही अगे जाता है।
0: बिल्कुल गल सही कही है तुसी। और इस दे नाल ही प्रोग्राम दा जिहड़ा समां इत्थे ही खत्म हो गया है। एक होर मैसेज सानू किक्की तिमान संगरूर तो भेजा सी किक्की तिमान होरां ने कि वातावरण दी संभाल करो ते सब तो वड्डी ये लोड़ है जिहड़ी अज दी है। पानी धरती यही साड़ी असली दौलत है, साड़ा आस पास जिहड़ा साड़ा चौगिरदा। बिल्कुल सही है जी। इस दे नाल ही प्रोग्राम दा समां इत्थे ही खत्म हो गया है। अगली वार होर जल्दी ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੀ ਇਸੇ ਆਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਾ ਟਿਹਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਹੈਪੀ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ ਐਂਡ ਸਟੇ ਬਲੈਸਡ। ਹੈਪੀ ਵੀਕੈਂਡ ਅਹੈਡ। ਲਵ ਯੂ ਆਲ।

अजय प्रेम की गजब कहानी, ये कैसा है फिल्म का नाम? बड़ा मजा आया सुन के मेरे को। आपने देखी है ये फिल्म? हाँ, मैंने पता है तुसी ये फिल्म देखी है।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, प्रोग्राम गीत बहार तुसी इंजॉय कर रहे हो अपने फेवरेट चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो ते। ते मैं थोड़ी दोस्त इंद्रप्रीत सेरा है। ब्रेक ते जान तो पहला जरा तुसी गीत सुनिया, आपकी कशिश ए फिल्म दा नाम सी आशिक बनाया आपने। सो अगला गीत बिल्कुल तैयार बर तैयार है मेरे को। टाइम हो रहा है जी 10:33। तो एनवायरमेंट की जो असी गल करिए, एक जरूरी चीज़ ये हैगी है कि जो भी तुसी अपने घर के कूड़ा जड़ा कट्ठा हो जाता है गारबेज, उन्हों जरूर वख वख रख्या करो। सुका कूड़ा अलग रख्या करो, गिला कूड़ा अलग रख्या करो। ये होंगे है कि एक सैग्रीगेशन हो जाती है अच्छे तरीके, जो इंसान उन्होंने लैके जाता है तो उन्होंने भी कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी हैगी। आसानी के नाल ये जो कूड़ा है एक जगह तो दूजी जगह पहुँच जाता है। जो आप बहुत ज़्यादा मिक्स मैच कर देंगे तो फिर दिक्कत वाली गल आ जाती है। एंड कोशिश यही की जाए कि डस्टबिन के कूड़ा रख्या जाए, ना कि वह जिदा वड़े वड़े पॉलीबैग्स बन के कई लोग

अपना मजेदार गीत जहर फिल्म दा, जहर जहर जहर वधिया लग गया ना इदा बोलिए, पर वो वर्ड नहीं अच्छा हैगा वो मैंने पता हैगा। आतिफ असलम की आवाज़ में तुसी बहुत ही बेहतरीन गीत सुनिया हैगा। तो प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार, विच ब्रेक भी आ जाती हैगी है, दैन उस तो बाद प्रोग्राम भी दोबारा शुरू हो जाता है। तो पता है कि जे तुसी मॉर्निंग उठ के स्किपिंग करोगे तो तुहाड़ी हैल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, वो पता है किदा। हुण मोस्टली असी यही देखते हैं कि भई फैट बहुत ज़्यादा वध रहा, ओबेसिटी जिहड़ी है मोटापा वधदा जा रहा है। सो उहदे लई की है असी डाइट प्लैन यूज़ करते हैगे हैं, जिम जाते हैं, पर की तुहानू पता है कि तुसी स्किपिंग करन दे नाल ही अपना जिहड़ा वेट लॉस कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, मॉर्निंग उठ के तुसी खाली पेट, चाहे तुसी पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, जो भी तुसी मॉर्निंग ड्रिंक लैंदे हो, लैण तो बाद स्किपिंग जरूर करो। उहदे नाल की हुंदा जदों खाली पेट स्किपिंग करदे हो ना, तो बहुत ही ज़्यादा वधिया रहिंदा जिहड़ी तुहाडी चर्बी हुंदी हैगी ना, हौली हौली पिघलनी शुरू हुंदी है, तो तुसी कुछ टाइम बाद पतले हो जांदे, पतले इन द सेंस फिट एंड हैल्दी हो जांदे हो। मैं ये नहीं कहती कि बहुत जीरो फिगर कर लो, वो भी नहीं अच्छी लगती हैगी, बट एक बैलेंस जरूर होना चाहिए। ना तुसी बहुत ज़्यादा मोटे होने चाहिए हो, ना पतले। अपनी डाइट एंड एक्सरसाइज इस तरीके की रखो कि तुसी बिल्कुल एक जो एवरेज वेट एंड हुंदा हैगा उन्ना का तुहाडा होना चाहिए। बिकॉज हुण जिद्दां देखा जा रहा अजकल की जिहड़ी जनरेशन है वो 40 दी 50 दी हो के बुढ़ी लगती नहीं है। हुण एड्डी वड्डी एग्जाम्पल लै लैने, रेखा जी, आए हाय रेखा जी, हले तक लगता ही नहीं कि यार वो बुजुर्ग ने, हले भी उन्होंने देख लो क्या नूर उन्होंने चेहरे पर हुंदा है, किन्ने सोहने वो लगते हैं। सो अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खास करके लेडीज़। मैं तुहानू कह रही हैगी हूँ इसलिए क्योंकि तुसी इन्ना का ज़्यादा फैमिली, बच्चे, हसबेंड सारे दे विच बिजी हो जाते हो कि अपने आप नू देखना भुल ही जाते हो। भैया सोहना जिहा टाइम कढ़ो, एक फेस पैक बनाओ, फेस ते लगाओ, चिल करो थोड़ा टाइम ली। हाँ काम तो होंगे ही रहने हैं, पर जे एक बारी सेहत खराब होगी ना वो छेती ठीक नहीं होंगी। सो ये तुहाडे हाथ है, अपने आप नू निहारो, अपने आप नू शीशे विच देख के गल्लां करो, यू आर ब्यूटीफुल, तुसी हमेशा ब्यूटीफुल हो, हमेशा ब्यूटीफुल ही रहोगे। सो ये जिहड़ा कॉन्फिडेंस है हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए हैगा। जिदों मैं तुहानू दसदी हाँ कि मेरे को भी एक सोहनी जी कुड़ी बैठी हुई हैगी इस टाइम स्टूडियो दे विच, और इन्नी क प्यारी वो लग रही है, इन्नी सोहनी सोहनी रील्स बना रही है मेरे को बैठ के, क्या सोहने सोहने फेसिस बना रही है। बई खूबसूरती तुहाडे दिल दे अंदर हुंदी है, जदों तुसी खुश हो वो चीज़ तुहाडे फेस ते दिसदी हैगी है। सो इंजॉय करते अगला गीत, गीत भी सुन के जिहड़ा है ना रूह नूं सुकून मिलता है, तो रूह नूं सुकून देने लई आ रहा है जी यह गीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी तड़का अपने फेवरेट चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो ते ते अगले दोस्त पहुंच गए ने। हेलो
1: वड्डियां दी सदा इज्जत करनी, झूठी गल कदे ना करनी, प्यार ना रहना, जुल्म ना सहना, गुरु ना दिलों भुलावे, पंजाबी विस्सा पंजाबी विस्सा। मैडम जी प्यार भरी सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन दोस्त पहुंचे ने साडे कोल?
1: सुखदेव सिंह बस्ती शेख जनक नगर जलंधर वालों सारे सुनने वाले श्रोतियां नूं प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम च।
1: धन्नवाद जी मैडम जी, तुसीं बहुत वधिया।

पूरा ट्रक न्याणिया दा एक विच दाज दे आया जे आउंदा अतबार ना तैनू मेरे उत्ते नारे देव थरीकियां वाले कोलों पुछ ला तू मटियारे आथण नू लेके जाना उना ले मुर्गी दाना जे करे पहुंच गए कल्ले लो वोटी।

FM News Headlines. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात अते दमन दे दौरे ते होंगे। करीब 21,800 करोड़ तो वध दी लागत वाले कई विकास प्रोजेक्टां दी करनगे शुरुआत। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप विच हिस्सा लैण वाले एथलीट्स नूं आयुष मंत्रालय दी योग 365 मुहिम दे आलमी राजदूत बनन दा सद्दा दित्ता। भारतीय रिजर्व बैंक अज अपनी 2 माही मुद्रा नीति दा ऐलान करेगा। लोक सभा दे साबका जनरल सकत्तर अते संविधान माहिर सुभाष सी कश्यप दा कल नवी दिल्ली विच देहांत हो गया। अज विश्व वातावरण दिवस है। केंद्रीय मंत्री भुपेंद्र यादव ने देशवासियों नूं जलवायु अते भविख लई कुदरत तों प्रेरणा लैंदे रहण दे अपने संकल्प नूं दोहराउण दी अपील कीती। रूस दे राष्ट्रपति वलादिमीर पुतिन ने भारत नूं भरोसेयोग भाईवाल दस्या है। कहा अमरीका का दबाव भारत रूस संबंधों प्रभावित नहीं करेगा। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड वालों पटियाला स्थित गुरद्वारा श्री दुख निवारण साहिब न प्रसाद वंडन लई वरते जाने वाले रिवायती प्लास्टिक बैगों चौगिरदे पक्की बनाने की अपील। पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों वालों मनमाने ढंग नाल फीसा विच वाधे ते रोक लई कानून दा खड़ा बनाउण ते हुकम दित्ते। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा वालों मुलाजम जथेबंदियां नाल मुलाकात, जायज मंगा ते जल्द कार्रवाई दा दित्ता भरोसा। मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ समेत होरना कई सूबियां विच गरज चमक दे नाल हनेरी चलन बारे ओरेंज अलर्ट जारी किया। मर्दा दे अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट दे सेमीफाइनल विच आज भारत दा मुकाबला पाकिस्तान नाल। इसन एफएम न्यूज़ हेडलाइंस ते हुन पेशे प्रोग्राम होम स्वीट होम। बस इस ब्रेक तो बाद

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: लड़ीवार
0: नाटक होया।

0: घर खर्चे दे पैसे दियो हस्बैंड जी।
1: ए राशन दे 15,000, सब्जियां दे 2,000
0: ते बिजली दे बिल दे।
1: हुन 0 रुपए किवें दवा?
0: ओहो भुली गई सी, हुन ता सोलर पैनल लग गए है ना, ता फिर जो बाकी बचे हुए 4,000 ने उसदी शॉपिंग करन चलिए।
1: जरूर, पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme, Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: मैं तुमको क्या कहूँ दीवाना। सोहना जिहा गीत तुसीं हुणे सुणिया ते मैनूं पता है कि तुसीं हुण इंतज़ार कर रहे हो कि मैं अगला गीत कहड़ा प्ले करूँगी। हमेशा इंतज़ार रहिंदा है। ते इह जिहड़ा गीत हुणे तुसीं सुणिया द ग्रेट गैम्बलर फिल्म दा सी। आशा भोसले दी आवाज़ ते किशोर कुमार दी आवाज़ विच तुसीं इह गीत सुणिया। एक होर सोहना जिहा गीत सुनते हैं इस प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ च।
1: तू तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

दीवार फिल्म का गीत होने तो सुने आशा भोसले ते किशोर कुमार दी आवाज़ विच प्रोग्राम चल रहा है मिड डे मेलोडीज। तेरी मोहब्बत ने हमें सिखाया है दर्द में भी मुस्कुराना सिखाया है। तेरी मोहब्बत ने हमें सिखाया है दर्द में भी मुस्कुराना सिखाया है। जब से तूने दिल से अपनाया है, जब से तूने दिल से अपनाया है, गमों को भी हमने अपना दोस्त बनाया है।

जब से मिला है प्यार तेरा, जब से मिला है प्यार तेरा, गम में भी मुस्कुराना सिखा दिया।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक प्रोग्राम विद मेलोडीज। एंजॉय कर रहे हो अपने फेवरेट चैनल्स 102.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो ते 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर ते। मैं थोड़ी दोस्त इंद्रप्रीत सिरा होनी। तुसी ब्रेक तो पहला जड़ा गीत सुनिया सीगा, शायद मेरी शादी का ख्याल अजकल आंदा है ते फिर डर भी लगता है। इस फिल्म का नाम सी सौतन, लता मंगेशकर ते किशोर कुमार की आवाज़ दे विच तुसी इस गीत नू एंजॉय किया। तेरी मुस्कान से दिल धड़क जाए, तेरी यादों से रूह महका जाए, तुझ बिन हर पल लगता है अधूरा सा, तुझ बिन हर पल लगता है अधूरा सा, तू साथ हो तो जैसे जहां सज जाए।

0: एक उम्र कटी दो अल्फाज में, एक उम्र कटी दो अल्फाज में, एक आस में एक काश में। जी हाँ दोस्तों, FM9 मेगा हार्ट्स का यह आकाशवाणी चैनल 102.7 मेगा हार्ट्स जलंधर दा रेनबो चैनल है जी। ते प्रोग्राम चल रहा है दिल आज शायर है। मैं हाँ थोड़ी आरजे दोस्त सुरभि। जी हाँ दोस्तों, दो लाइना मैं पहला कही चो शायरी बोली चो प्यारियां जी लाइना लिखिया सी गुलजार साहब ने। यह तो गल हो गई उन्हां दी, पर हुण शेरो शायरी का समा हो चुका है थोड़े सब दे ले। जी हाँ, पूरे 2 बज गए हैं ते सुकून वाला प्रोग्राम आ गया है ना। मैनू तो यही लगता है कि प्रोग्राम सुकून वाला है, जो कि राहत दिंदा ते सुकून दिंदा है। इस करके इस विच आपां दिल दीआं गल्लां भी करते हैं, अपने जज्बात एक दूसरे नाल शेयर करते हैं, वह भी शायरी के माध्यम नाल। ते लो जी, अपने दोस्त नूं हुण जल्दी जल्दी शेरो शायरी भेजनियाँ शुरू कर दो जी। नंबर भी मैं अनाउंस कर दिंदी हाँ, पर इस दे नाल मैं तुहानूं दसदा कि शेरो शायरी भेज तो रहे हो तुसी, पर खास ध्यान तुसी रखना है वो तुसी चंगे तरीके नाल जानते हो कि मैं की कहन वाली हाँ। जी हाँ, एक खास ध्यान रखना है जी कि तुसी जो भी शायरी भेजोगे अपने नाम दी भेजियो, यानी कि अगर तुसी खुद लिख रहे हो तो, अगर तुसी किसी होर दी भेज रहे हो तो एक गल का ध्यान जरूर रखियो कि शायरी जिहड़ी है जिन्हां दी भी लिखी गई है उन्हां दा नाम भी जरूर मैनशन करियो। सो शुरुआत करते हैं इस सफ़र की। हुण तुसी मैनू शायरी भेजनी है साडे वट्सएप नंबर ते, नंबर है 9855 10 10 27 9855 1010027। इस नंबर ते अपनी आरजे दो सुरभि नूं तुसी ऐसे सारे शायर जल्दी जल्दी शायरी भेज सकते हो।
1: दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, ये फुर्सत रुकी हुई नहीं है, कोई ठहरी हुई जमी हुई चीज नहीं, एक जुनबिश है एक हरकत करती हुई कैफियत।

जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है दिल आज शहर है। तुहाडी दोस्त आर जी सुरभी तुहाडे नाल मौजूद है और मेरे नाल बहुत सारे शहर भी जुड़ चुके ने। बड़ी खुशी होंदी है मैनू जदों तुसी सारे मैनू इदां प्यार करदे हो ते शायरियां भेजदे हो। सो हुण बिना देर किते मैं तुहाडे अगे शायरी नज़र करदी हाँ। पिंड महरमपुर नवा शहर तरलोचन निक्की होना ने सानू अपनी शायरी भेजी है। कहिंदे ने कीता प्यार तेरे नाल दिलो वे यारा, कीता प्यार तेरे नाल दिलो वे यारा, मैं कुछ होर ना रब तो मंगदी वे, ना चित करे कोई कम करन नू, किन्नी चढ़ गई लोर इश्क दे रंग दी वे। दिन ओसिया पापा लंघ जांदा पर रात ना चंद्री लंघदी वे, आ बह जा सामने मेरे वे, तेनू तक तक रूह ना रसदी वे। ये प्यार पता नहीं आया कितों, ये रात पी जांदा तन मन दी वे। बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने डिफाइन किया है अपने प्यार नू। प्यार दी वो डेफिनेशन जो असी कई बार नॉर्मल लफ्जा विच नहीं कह सकते, उसनू इसी तरीके दे नाल खूबसूरती दे नाल असी बयान करते हैं। बहुत वधिया लिखिया, बहुत चंगा लगा पढ़ के भी। तेज़ दे नाल सानू होर भी पहुँच चुकी है शायरी। कहिंदे कुछ नहीं चाहिए तेरी एक मुस्कान ही काफ़ी है, कुछ नहीं चाहिए तेरी एक मुस्कान ही काफ़ी है, तू मेरे दिल में बसे रहो ये अरमान ही काफ़ी है। हम ये नहीं कहते कि तुम मेरे पास आ जाओ, हम ये नहीं कहते तुम मेरे पास आ जाओ, बस हमें याद रखना तुम्हारा ये एहसान ही काफ़ी है। ये सानू भेजी सी जी बलविंदर सरा पिंड मोर चंड सिखा हनुमानगढ़ तो। बस कई बार दिल करता है कि जिन्होंने पर चाहते हैं वो साढ़े नाल हमेशा रहन, उन्होंने मुस्कान ही काफ़ी होंगी। कहते ना अपने प्यार की खुशी में खुश रहना ही खुशी होंगी है। तो कई बार साड़ी जिंदगी किसी की मुस्कान ही काफ़ी होंगी है, किसी के याद करना ही काफ़ी होंगे सानू। चलो अगे वधदे हाँ जी, अगली भी शायरी पहुँच चुकी है सानू। कहिंदे ने किस तरफ को चलती है

हवा नहीं मालूम, किस तरफ को चलती है अब हवा नहीं मालूम, हाथ उठा लिए सबने और दुआ नहीं मालूम, आज सबको दावा है अपनी अपनी चाहत का, कौन किससे होता है कल जुदा नहीं मालूम। मंजरों की तब्दीली बस नज़र में रहती है, हम भी होते जाते हैं क्या से क्या नहीं मालूम, हम फराज शेरों से दिल के जख्म भरते हैं, क्या करे मसीहा को जब दवा नहीं मालूम। क्या बात है जी, इस अनपेजी से कुलविंदर टेलर होना नहीं, पिंड कंडोला नियर आदमपुर तो, और ये शेरो शायरी का सिलसिला लगातार जारी है और मैंने बहुत सारियाँ पहुँच भी चुकी ने, जल्दी मैं बाकी भी थोड़े सारे दे नज़र करूँगी, पर एक प्यारी जी गज़ल जड़ी मैं ज़रूर हूँ पेश करूँगी। नंबर तो सबनों पता है, तो सब नंबर है जी, फिर भी मैं अनाउंस करूँगी कि 9855 10 10 2। इस नंबर पर तुसी सानू भेजनी अपनी शायरी 9855 1010 27, ये साडा नंबर है। इस नंबर पर अपनी शायरी भेजो, अपने दिल के जज्बात किसी डेडिकेट करना हो भी तुसी कर सकते हो जी, अज खुल के अपने दिल की गल मेरे नाल तुसी सांझी कर सकते हो। प्रोग्राम का सफर इसी तरीके चलता रहेगा जी, इस गीत तो बाद मुड़के आउंदी हां जी।

जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा सी दिल आज शायर है। मैं हाँ जी तुहाडी आडे दो सुरभी जो हूँ तुहाडे को इजाजत लैन लगी है इस प्रोग्राम लई। फिर तो आऊँगी जी पूरे 4 बजे प्रोग्राम लैके हैलो जलंधर। कितने नहीं जाना तुसी, अगला प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर है जो तुहाडी सेहत नाल जुड़िया हुआ बड़ा ही खास प्रोग्राम है।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं अनुराधा और एक बार फिर लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। श्रोताओं, बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदला और बदलता रहेगा, लेकिन ये सच्चाई कभी नहीं बदलेगी कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ जलवायु की ज़रूरत होती है, और वो तभी होगा जब पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। जी हाँ, आज का विषय अब तक आप समझ चुके होंगे, आज है विश्व पर्यावरण दिवस। इस उपलक्ष्य में आज पर्यावरण की अहम भूमिका पर चर्चा होगी। यदि आपका भी है कोई सवाल तो हम तक आप पहुँचा सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 0112342108। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। आपके सवालों का समाधान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जी सी खिलनानी, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, PSRI हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब का हम स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम में। जी, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
2: हाँ, बिल्कुल।

0: धन्यवाद बहुत
1: जी
0: आपका, मैं वेरी हैप्पी टू बी हियर।
1: तो डॉक्टर साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करें उसके पहले श्रोताओं को ये बता दें कि वर्ष 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर, जिसका आधिकारिक ग्लोबल स्लोगन है नाउ फॉर क्लाइमेट, अब जलवायु के लिए कदम उठाएं। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल यही है कि इस समय जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है लगातार, उसका क्या कारण है?
0: अनुराधा, ऐसा है कि जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, उसकी हमें ज्यादा जरूरत है, जब बल्कि एनवायरनमेंट को हमारी जरूरत नहीं है। तो जो एनवायरनमेंट है वो सिर्फ वायु प्रदूषण नहीं होता है, उसमें पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पानी होता है, पौधे होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एक ये सब मिला के इको सिस्टम बनता है, जिसमें जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, हर आदमी प्लास्टिक की बोतल में पानी पीता है सेफ्टी के लिए, लेकिन मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक जो यूज होता है वो आखिर कहाँ जाता है? आखिर वो पानी में जाता है, आखिर वो हवा में जाता है। दिल्ली में एक शोध हुआ था जिसमें कि माइक्रो प्लास्टिक हवा में पाए गए थे
1: जी,
0: और जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसी तरह से हमारी जो एक्टिविटीज है, एक तो वायु प्रदूषण तो है ही, जो डीजल से और पेट्रोल से और कोयले से, उससे हमारी जो एक्टिविटीज है उनकी वजह से जो हम एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, उस वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। और आपने देखा होगा कि पहले जो आपने शायद नहीं देखा, मेरी उम्र के हिसाब से जब मैं छोटा था तो सर्दियों में सर्दी होती थी, गर्मियों में गर्मी होती थी
1: जी।
0: लेकिन अब जो है वो मौसम में इतना परिवर्तन आ गया है, बहुत एक्सट्रीम हीट आती है, 47-48-50 डिग्री पे भी जा रहा है। इस वजह से जो बाढ़ का आना और साइक्लोन्स का आना, नेचुरल कैलमिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि हमें अपने पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को बचा के रखना है। और इसी संदर्भ में 1972 में यूनाइटेड नेशंस ने 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे डिक्लेयर किया था, जिसको कि आज हम कमेमोरेट कर रहे हैं। इसके बाद में आपके जो प्रश्न होंगे उनका मैं
1: जरूर, डॉक्टर साहब जो बातचीत है उससे तो हमारे श्रोताओं तक संदेश पहुंचेगा ही। यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक ले रहे हैं, उससे भी संदेश लोगों तक पहुंचेगा। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: तो श्रोताओं, आज पर्यावरण दिवस पर हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जी सी खिल्लानी जी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे अभी जलवायु परिवर्तन की, ये किस तरह से हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए?
1: देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो बात करूं मैं
0: जी,
1: वायु प्रदूषण की, जो कि मेरा रिसर्च एरिया रहा है।
0: जी,
1: और आप दिल्ली में रहते हैं तो जैसे ही दिवाली आती है तो प्रदूषण बढ़ता है और आपका गला खराब होने लगता है,
0: बिल्कुल,
1: आपको आवाज भारी हो जाती है, नाक बहने लगती है, आंखें जलने लगती हैं और कभी बार स्किन में भी इरिटेशन और इचिंग होनी शुरू हो जाती है। शाम को आपको थकावट होती है, नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है कई बार।
0: जी,
1: तो ये तो, और हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर के पास अटेंडेंस बढ़ जाती है, खांसी पेशेंट आते हैं और हम उनको देखते हैं तो न उनको बुखार होता है, दवाइयां देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, कुछ असर ही नहीं करते। ये तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है क्योंकि जो वायु प्रदूषण हमारे लंग्स में जाते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जो अहम है वो है हमारे सिस्टम पे क्या इफेक्ट करता है। जो वायु प्रदूषण जो होता है वो एक तो पार्टिकुलेट मैटर होता है, जिसको हम PM 2.5 कहते हैं, जो आजकल सब जानते हैं। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, लेड होता है। इन सबको मिला के जो एक नंबर हम देते हैं वो कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI। तो ये जो AQI जो

0: है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि मैं एक सदस्य हूँ एक्सपर्ट कमेटी का, 99% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ना वो वर्ल्ड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंदर नहीं रहती है, और उसमें इंडिया तो बहुत ही आगे है। अब इसका असर ये हुआ है कि एक शिकागो की स्टडी आई थी 2 साल पहले कि भारतीयों का जो जीवन काल है वो 5.3 साल कम हो रहा है सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से। वो इसलिए कि वायु प्रदूषण न सिर्फ खांसी करता है बट एक COPD बीमारी होती है, ये अस्थमा करता है, ये लंग कैंसर भी करता है, हार्ट अटैक्स भी करता है और तरह तरह के कैंसर्स भी करता है। तो ये सब
1: जी। तो श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं आज पर्यावरण के बारे में कि किस तरह से बहुत मुश्किल हमारे लिए हो सकती है कि अगर हम समय पर जागरूक नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं इस बात के। अगर पॉल्यूशन को नियंत्रण करें तो हो सकता है कि स्थितियां कुछ सुधर जाएं, क्योंकि हम आजकल ये देखते हैं कि जो लगातार हम कहीं आना जाना होता है तो गाड़ियों से जाते हैं, घर में तमाम ईंधन के साधन वो प्रयोग होते हैं, जितने भी साधन ईंधन के हो सकते हैं हम सबका समुचित उपयोग करते हैं ये समझे बिना कि अगर थोड़ा सा नियंत्रण करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और स्थितियां दिन ब दिन किस तरह से बिगड़ रही हैं ये हम सब देख पा रहे हैं। और डॉक्टर साहब लगातार हमें जागरूक कर रहे हैं कि यदि हम संभल जाएंगे तो हमारी स्थिति किस तरह से बदलती जो जा रही है वो संभल सकती है, क्योंकि अभी अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वायु प्रदूषण की वजह से फेफड़ों की बीमारी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे?
0: हाँ, तो मैं जो बात कर रहा था वो कि जब अगर इंडिया की बात करें तो वायु प्रदूषण जो है ना ये मोटर व्हीकल से सबसे ज्यादा आता है
1: जी,
0: लकड़ी कोयला जलने से बहुत है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होता है।
1: डॉक्टर साहब, एक एक घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं, कहीं ये लोगों को ये सोच नहीं बन पा रही है कि किस तरह से इस बात को समझे कि ये जो दुरुपयोग हो रहा है चीजों का ये कहीं ना कहीं हमें मुश्किल में डाल सकता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। या अगर घर में 4 जने हैं तो 4 की जगह 5 गाड़ियां भी होती है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं
1: जी।
0: कोई भी ये नहीं सोचता कि 3 जने साथ मिलके जाएं, एक ही जगह जाना हो तो सब लोग अलग अलग, और गाड़ियों का वो बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है
1: जी।
0: 40-50 साल पहले एक मारुति 800 गाड़ी होती थी, वही एक सबसे पॉपुलर कार थी, आज SUV इतनी है। और दूसरा डीजल का जो उपयोग हो रहा है उससे भी वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है।
1: तो ये फेफड़ों के लिए डॉक्टर साहब किस तरह से हानिकारक है कुछ विस्तार से बताएं, क्योंकि लोग समझते तो हैं लेकिन जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, और आज के दिन हमारा विशेष प्रयास यही है कि समझें कि जिम्मेदारी हमारी अपनी है।
0: हाँ, तो जहाँ तक फेफड़ों का प्रश्न है कि जो जैसे हम बच्चों से शुरू करते हैं, जो जैसे दिल्ली NCR के जो बच्चे हैं, हर तीसरे बच्चे को आज अस्थमा है, हर जिस घर में 2 बच्चे हैं अमूमन सबके पास नेबुलाइजेशन मशीन है, क्योंकि बच्चों को खांसी होती रहती है और दमा होता रहता है। और एक रिसर्च हुई थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में
1: जी,
0: जिसमें देखा गया कि जो दिल्ली के जो स्कूल के बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के, उनके लंग फंक्शन साउथ इंडिया के बच्चों के बनस्पत कमजोर है। तो ये दर्शाता है कि जो वायु प्रदूषण का जो इफेक्ट है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है, और एक तो एस्थमा बहुत कॉमन होता है और दूसरा एक ब्रोंकाइटिस होती है जिसको हम COPD कहते हैं, वो अंग्रेजी में कहूँ तो 3rd leading cause ऑफ डेथ है पूरी दुनिया में
1: जी।
0: तो पहले हम जब पढ़ा करते थे तो 90% ब्रोंकाइटिस स्मोकिंग की वजह से होती थी, लेकिन अब जो है 50% ब्रोंकाइटिस जो है वो वायु प्रदूषण की वजह से होती है, और एक बहुत बड़ा कारण है न सिर्फ डेथ का, लेकिन एक बार जिसको COPD हो जाती है उसका हमारे पास कोई पुख्ता इलाज नहीं होता, फिर वो आदमी खांसता ही रहता है, फिर ऑक्सीजन पे चला जाता है। इसके अलावा लंग कैंसर की बात करें तो पहले हम जब पढ़ा करते थे कि 90% लंग कैंसर सिर्फ स्मोकर्स में ही पाया जाता है, लेकिन आज जो है 40% लंग कैंसर जो है वो नॉन स्मोकर में होता है, वो भी प्रदूषण की वजह से। और इस लंग जो कैंसर जो है की डेथ्स होती है, लंग कैंसर उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नंबर 1 कॉज है मॉर्टेलिटी का। तो ये लंग कैंसर

0: एस्थमा और ब्रोंकाइटिस और निमोनिया,
1: जी
0: ये चार चीजें हैं जो वायु प्रदूषण से होती हैं। तो इसलिए हमें समझना है आज के दिन कि हमें जो एक्टिविटीज है, चाहे वो हम गाड़ियां चलाते हैं या कोयला जलाते हैं या घर में लकड़ी जलाते हैं, जब जब सर्दियां आ जाती हैं तो बाहर बैठ के कागज टायर कुछ जलाते हैं, उसके अलावा जो अंदराजा जी जो आज दिल्ली में देखूं तो हर चौथा घर कंस्ट्रक्शन चल रही है
1: जी जी,
0: उससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, उसके उससे भी बचाव होना चाहिए
1: जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर हैं, जान लेते हैं कि उनका क्या सवाल है। जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताएं सर क्या जानना चाहते हैं।
2: हाँ मैं उत्तराखंड से रघुवीर जी बोल रहा हूँ।
1: जी रघुवीर जी बताएं क्या सवाल है आपका।
2: तो मुझे तो थोड़ा अपना ये पर्यावरण से संबंधित आपसे ही कुछ बात करना है।
1: जरूर, आज का विषय वही है और डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको।
2: हाँ तो मेरा थोड़ा सा सुझाव है। तो जहाँ तक ये जो स्वास्थ्य के बारे में जो जहाँ तक ये प्लास्टिक की जो जो खाली बोतल हम फेंक देते हैं या मतलब
1: जी
2: तो उसके लिए कुछ सरकार को या कुछ मेडिकल जो वो हैं जो मेडिकल संस्थाएं हैं उनको एक प्रयास ये रहना चाहिए कि जो प्लास्टिक की बोतल लाएं और उन इनाम पाएं, तो कुछ मतलब जैसे कुछ ऐसे होना चाहिए
1: जी।
2: मेरे ख्याल से
1: जी
2: मैं आपसे ये बात करना चाह रहा
1: हूँ। जी बहुत अच्छा सुझाव है आपका और ऐसे सुझाव जरूर हमारे श्रोता सुने और अपनाए भी, सिर्फ सुझाव ही ना दें हम उसे अपनाए भी। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे।
0: नहीं बिल्कुल इन्होंने अच्छा बोला। आजकल क्या हुआ है कि जो बड़े बड़े होटल्स हैं जहाँ पर वहाँ पर प्लास्टिक बॉटल्स अब नहीं रखी जाती, ग्लास बॉटल में ही पानी सर्व किया जाता है, लेकिन जो अमूमन जगह पे है सड़क पे जो बोतलें होती हैं, आप सोचें जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं वो जब ट्रकों में जाती होंगी तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो चलती होंगी, तो वो पानी में भी माइक्रो प्लास्टिक चले जाते हैं उनमें। और तो ये जरूरी है कि न सिर्फ प्लास्टिक बल्कि जो प्लास्टिक जो पॉलिथीन बैग्स होते हैं जो डिस्पोजेबल बैग्स होते हैं वो बहुत बड़ा एक कारण है, वो अल्टीमेटली पानी में जाते हैं, नदी नालों में जाते हैं, वो पानी फिर सो कॉल्ड प्यूरिफाई करके आता है लेकिन उसमें उसके जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं वो रहते हैं। तो जरूरी है कि आदमी सब्जी लेने जाता है, सामान लेके जाता है तो अपना कपड़े का बैग लेके जाए और ये प्लास्टिक की बॉटल्स यूज नहीं करे और पॉलिथीन के जो बैग्स होते हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए। और बहुत तरह से प्लास्टिक यूज होता है जो कि फेंका जाता है और हम जो डिस्पोज करते हैं वो सेग्रीगेट तो नहीं करते। आप अगर विदेशों में जाएंगे तो हर घर में तीन तरह के डब्बे होते हैं, आपको कागज अलग से फेंकना होता है, जो पेरिशेबल होता है वो अलग से फेंकना होता है, लेकिन हमारे यहाँ सब मिक्स होके जाता है और ये बहुत बड़ा। और वो क्या करता है, जैसे दिल्ली की बात करें तो भी जो भी हमारा वेस्ट होता है उसको जलाया जाता है, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है पॉल्यूशन का। और मैंने जैसे शुरू में बोला जिन्होंने ये बात नहीं सुनी हो कि दिल्ली की हवा में माइक्रो प्लास्टिक्स जो होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं, कैंसर करते हैं, ब्रोंकाइटिस करते हैं, तरह तरह की बीमारियां करते हैं, वो बहुत मात्रा में पाया गया है, ये एक रिसर्च हुई थी। तो मैं रघुवीर जी के सजेशन से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ और मानता हूँ कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है
1: जी।
0: ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि सरकार ही इसको इम्प्लीमेंट करे, ये हर सिटीजन का
1: दायित्व,
0: हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो प्लास्टिक को यूज ना करे, पेड़ पौधे लगाए और अननेसेसरली सर्दियों में जो है ना लकड़ी वगैरह बाहर बैठ के जो बोन फायर करते हैं और जलाते हैं उसको ना करें। अगर आपके गार्ड हैं वो गार्ड बेचारे जब सर्दी में बाहर बैठते हैं तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, फिर वो फिर कुछ भी जलाते हैं, कागज लकड़ी जो उनको मिल जाता है
1: जी।
0: तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने पर्यावरण को सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, आगे की चर्चा हम जरूर करेंगे, पहले एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनुराधा, और मेरे साथ डॉक्टर जी सी खिलनानी जी हैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। यदि आप भी आज के विषय से जुड़ा कोई भी सवाल जानना चाहते हैं, उसका समाधान चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 0112342108 और आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ चुके हैं, जिनमें से पहला मैसेज मैं ले रही हूँ, ये है पूजा खन्ना जी का, सुभाष नगर दिल्ली से। लिख रही हैं कि दिल्ली में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक आम नागरिक के तौर पर हम अपने घरों को बिना एसी के ठंडा रखने और अर्बन हीट आइलैंड के असर को कम करने के लिए क्या छोटे बदलाव कर सकते हैं?
2: ये पूजा जी, बहुत एप्रोप्रिएट, सही वक्त पे आपने सवाल पूछा है। पहले टेम्परेचर 43-44 तक नॉर्मली जाता था दिल्ली में, अब 46-47 पे भी जा रहा है। तो हर आदमी तो एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, और हर जगह एसी चल भी नहीं सकते हैं। स्कूलों में और एसी चलाना भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए गर्मी से बिल्कुल बचने के लिए पहले तो गर्मी के इफेक्ट क्या होते हैं ये समझना है हेल्थ के ऊपर। जब आपको गर्मी लगेगी, एक तो गर्मी लगती है, एक वो एहसास होता है कि अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन गर्मी लगने से डेथ भी हो जाती है, जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। लेकिन हीट स्ट्रोक होने से पहले आपको हीट एग्जॉशन

0: होता है, मतलब आपको भूख लगना बंद हो जाती है, नौजिया होता है, वॉमिटिंग हो जाती है, फीवर हो जाता है, खाने को कुछ मन नहीं करता। ये सब होने के बाद धीरे धीरे ऐसे होता है, फिर बेहोशी आने लग जाती है और उसके बाद कन्वर्जेंस भी आने लग जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन उससे बचने के लिए जरूरी है कि जब दोपहर का समय हो उस समय आप बाहर जाएं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप छतरी ले सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस समय आप कपड़े रंगीन ना पहने, कॉटन के लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे तो आपका हीट इफेक्ट, क्योंकि जो रंगीन काले कपड़े होते हैं वो हीट को बहुत एब्जॉर्ब करते हैं।
1: जी
0: उसके अलावा रेगुलरली आपको पानी पीना है। पानी का मतलब ये नहीं है कि आप आइस कोल्ड पानी सिर्फ पिए, नॉर्मल पानी जो है, हाइड्रेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरा ये होता है कि जब आपको ये जो सिम्टम्स हो जो मैंने आपको बताया, उस समय आपको बिल्कुल रेस्ट करना है। और उस समय तो जरूरी होता है कि आदमी ठंडे एनवायरनमेंट में, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में ठंडे पानी से नहा ले, तो
1: जी
0: आप हीट के इफेक्ट से
1: बच
0: बच सकते
1: सकते
0: हैं।
1: हैं जी।
0: और कुछ लोग ये भी करते हैं कि एसी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो 19 डिग्री पे जो है ना एसी चला के खूब सोचते हैं, उसका मजा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब एकदम वो जब बाहर आते हैं तो वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं,
1: बिल्कुल जी
0: अस्थमा हो जाता, अटैक हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जो फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर है वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ लिक्विड इंटेक जो है ना वो एडिक्वेट होनी
1: होना
0: चाहिए
1: चाहिए जी।
0: उससे
1: डॉक्टर
0: बचने
1: साहब
0: के।
1: आपसे बहुत कुछ जानेंगे, अभी एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं सर।
2: हेलो, मैं नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार जी,
0: नमस्ते
2: मैं मिसेस
1: जी,
2: बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से।
1: बताएं क्या सवाल है आपका।
2: मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जब ये जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स आप समझा रहे थे, तो ये जब शुरू ही होती है तो क्यों नहीं इनका बनना बंद किया जाता। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन, और ये जो स्लम्स हैं ये सब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वो भी हमारी पोल्यूशन को बहुत बढ़ावा दे रही है। और एक मैं ये जानना चाहती हूँ, लोग कहते हैं ना कि ग्रीन हाउसेस बहुत बड़ी पोल्यूशन दे रहे हैं, मेरे को ये समझना है आपसे कि ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं।
0: तो आपने बहुत सारे सवाल पूछे, मैं एक एक करके जवाब देते हैं। एक
2: हाँ
0: दो,
2: जी
0: पहली बात, जो प्लास्टिक बॉटल बनना बंद बंद होना चाहिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है और बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि प्लास्टिक एक यूजफुल चीज भी होती है, किसी किसी चीज में जरूरी भी होती है, लेकिन इसका जो डिस्पोजल होता है ना
2: हाँ जी
0: वो इम्पोर्टेंट है। अब आप जैसे कभी ट्रेन में जाते होंगे तो वहां लिखा होता है कि अपनी उसको डिस्ट्रॉय कर दें ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन करता कोई नहीं है। दूसरा ये है कि प्लास्टिक जो होता है वो उसका जो मिसयूज जो हो रहा है, जो ओवर यूज हो रहा है,
2: हाँ
0: हर चीज
2: जी
0: का यूटिलिटी होती है और एक मिसयूज होता है। कार का यूज होता है, आप चलाओ, जरूरी हो चलाओ, लेकिन उसको खामखा चलाना, या कार आपकी धुआं मार रही है फिर भी आप उसको चलाए जा रहे हैं बिना चेक कराए, वो उसका मिसयूज होता है। तो प्लास्टिक का मिसयूज नहीं होना चाहिए। जहां तक आपने पॉपुलेशन की बात करी, मैं मानता हूँ इंडिया इस समय नंबर 1 पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड का, वो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो और जो आप कह रहे हो कि स्लम्स में ओवर क्राउडिंग होती है, डेफिनेटली उससे हमारा पॉल्यूशन भी बढ़ता है, गंदगी भी बढ़ती है, लेकिन ये तो उसके लिए कोई मेरे पास कोई उसका कोई उपाय नहीं है। जो ग्रीन हाउस है वो वहां पे भी गैसेस निकलती है, लेकिन एक रिलेटिव टर्म्स में वो माइनर इशू है हमारे लिए। हमारे लिए जो मेजर इशू है वो है वायु प्रदूषण, प्लास्टिक, और जो पेड़ पौधे जो कम हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, और जो जंगल काटे जा रहे हैं और उनसे लकड़ी बनती है, कागज बनती है, और जो बिजली का ओवर यूज, स्पेशली गर्मियों में हम बिजली यूज करते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि बिजली बनती कैसे है। बिजली 90% से ज्यादा कोयले से बनती है,
1: जी
0: और वो जब कोयला जलता है उससे जो गैसेस निकलती हैं वो बहुत बड़ा हिस्सा होता है वायु प्रदूषण।

0: बिल्कुल
1: इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने आप को संयम रखें, कार पूलिंग कर लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, जब आप कुछ सामान खरीदने जाएं तो रीयूजेबल कपड़े के या जो भी बैग आपके पास है उसको लेके जाएं, प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंकें, अपने कचरे को सेग्रीगेट करके दें सो दैट वो मिक्स ना हो,
0: जी
1: क्योंकि उन ये सब छोटी छोटी चीज करने से हम अपने जो दुनिया के जो बेहतरीन देश है जहाँ वायु प्रदूषण कंट्रोल में है वो सब इन चीजों का पालन करते हैं। जैसे आप सिंगापुर की बात करें, बहुत एक्सपेंसिव है, आप कार वहां रख ही नहीं सकते क्योंकि उसके टैक्सेस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए लोग वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करते हैं। तो सिंगापुर की जो एयर क्वालिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट है।
0: जी
1: ऐसा नहीं है कि वहाँ पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन इंडिया जैसी नहीं है पर है पॉपुलेशन, लेकिन कार बहुत कम लोगों के पास है और कार की जो क्वालिटी है, फ्यूल क्वालिटी और इंजन क्वालिटी, उसका स्ट्रिक्ट उसका एक्शन होता है, स्ट्रिक्ट उसका पालन होता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, ये हम लोग मैनमेड प्रॉब्लम है
0: जी
1: हमारी।
0: डॉक्टर साहब, एक बात और देखने को सामने आती है कि बढ़ते तापमान की वजह से त्वचा की बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। ये किस वजह से है और कैसे इस पर नियंत्रण हो?
1: नहीं, त्वचा की बीमारियां स्पेशली हीट से नहीं होती है, हीट से थोड़ी उसमें बर्निंग होती है, लेकिन त्वचा की बीमारियां भी, एक तो एलर्जिक कंडीशन ज्यादा होती है उससे और दूसरा वायु प्रदूषण से भी उसमें इचिंग होती है। लेकिन मैं डर्मेटोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन स्किन की इचिंग का कारण होता है वायु प्रदूषण,
0: जी
1: अदरवाइज इसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट इफेक्ट लंग पे, हार्ट पे, ब्रेन पे, हमारी जो धमनियां होती हैं, ब्लड वेसल्स पे, किडनी पे, इंटेस्टाइन पे, इन पे ज्यादा होता है।
0: जी डॉक्टर साहब, एक मैसेज हमारे पास आया हुआ है नरदेव सिंह चौहान जी का, कोटद्वार उत्तराखंड से। लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का एक पेड़ माता के नाम कितना उपयोगी है। दूसरा, अत्यधिक शहरीकरण प्रदूषण का मेन कारण है, व्यक्तिगत क्या प्रयास किए जाने चाहिए?
1: नहीं, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। डिफॉरेस्टेशन जिसको कहते हैं जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ा कारण है हमारा पॉल्यूशन का। तो हर हम सब कहते हैं कि आप पेड़ लगाओ। दूसरी बात क्या बोली, सॉरी। हाँ,
0: उनका ये कहना है कि शहरीकरण जो हो रहा है उसकी वजह
1: डेफिनेटली
0: से कितना नुकसान है आज?
1: शहरीकरण तो जो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका तो बहुत ही, अब जैसे अब ऐसे भी शहर हैं जहाँ पीतल की इंडस्ट्री बहुत का प्रचलन है, वहाँ पीतल को गलाया जाता है और उसके सुंदर सुंदर चीजें बनाई जाती हैं, तो उस शहर में न सिर्फ लंग की कंडीशन ज्यादा होती है, ट्यूबरक्लोसिस भी ज्यादा होती
0: जी
1: है, इन्फेक्शन भी ज्यादा होते हैं। तो जो शहरीकरण है उससे ये सब जो आर्टिफिशियल चीजें हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है, जब गाड़ी होगी तो गाड़ी धुलने की भी सर्विस स्टेशन भी होते हैं, तो इस तरह से वर्कशॉप्स भी होती हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा एमिशन होता है। तो शहरीकरण से तो फर्क पड़ता ही है, जितना आप शहर से दूर रहेंगे
0: जी
1: उतना आप वायु प्रदूषण से बचे रहेंगे। मतलब अगर आप उत्तराखंड में चले जाएं, पहाड़ों पे चले जाएं, पिथौरागढ़ चले जाएं,
0: जी
1: तो डेफिनेटली वहाँ वायु प्रदूषण कम होता
0: जी
1: है, इसमें तो कोई शक
0: गांवों
1: नहीं।
0: की
1: तो
0: जो आबो हवा है
1: मैं
0: आज भी शुद्ध है, डॉक्टर साहब ऐसा कहना चाहेंगे?
1: सॉरी,
0: मैंने कहा आज भी जो गांवों की आबो हवा है वो शुद्ध है वनस्पत शहरों के।
1: गांव की नहीं, जो जो पहाड़ी एरिया है ना
0: जी
1: जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है और पेड़ ज्यादा है,
0: जी
1: गांव में तो फिर और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। वहां भी जो फॉसिल फ्यूल जो कहते हैं लकड़ी वगैरह, कोयला खूब जलता है और आपको पता ही है क्रॉप
0: जी
1: बर्निंग होती है, तो वहाँ कितना बुरा हाल होता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसमें डेंसिटी कितनी है और वहाँ का लाइफस्टाइल क्या है।
0: जी
1: लेकिन डेफिनेटली आप अगर, अब दिल्ली तो कैपिटल है एयर पॉल्यूशन का, सब जानते हैं, तो पर हर शहर दिल्ली नहीं है, कुछ शहर अच्छे भी ऐसे भी है जहाँ, जैसे इंदौर को सबसे क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है, तो वहां के लोगों में बहुत जागरूकता है। वहां अगर आप कागज फेंकेंगे सड़क पे तो कोई आपको टोकेगा।

0: तो ये हम सब की जिम्मेदारी है, इसको हमें पालन करना चाहिए
1: जी। पेड़ लगाएं, ये तो हम संदेश दे ही रहे हैं, साथ साथ छोटी छोटी बातें हैं श्रोताओं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर साहब लगातार हमें जागरूक कर रहे हैं। और अब सुन लेते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत जिसमें पूरा पर्यावरण का जिक्र आपको मिलेगा।

जब ऐसे पेड़ झूमते रहेंगे तो आपका जीवन भी झूमता रहेगा, क्योंकि ज़रूरी इसलिए है पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारा जो वायुमंडल है वो भी स्वस्थ रहे और हम भी स्वस्थ रहें। जी हाँ, आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण दिवस पर। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जी सी खिलनानी जी।

0: यदि आपका भी इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 01123421080 और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए भी नंबर आपको बताए देते हैं, नंबर है 9868107070। तो डॉक्टर साहब, अब जो समस्या इस समय बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है वो है नॉइज़ पॉल्यूशन, इसकी वजह से क्या मानसिक बीमारियाँ बढ़ रही हैं?
1: तो नॉइस पॉल्यूशन जो है ना, वो भी एक समस्या है जिसको कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। नॉइस पॉल्यूशन की वजह से एक तो आदमी की नींद डिस्टर्ब होती है, और नींद बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जो हियरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी ज्यादा उससे होती हैं, और कॉन्सेंट्रेशन आदमी की जो होती है किसी भी काम में वो भी अफेक्ट करती है। लेकिन कोई भी इसको मेजर नहीं करता, कोई भी इसका ध्यान नहीं देता
0: जी।
1: क्योंकि लाइफ में इसका लोगों को ज्ञान भी नहीं है, और इसकी इम्पोर्टेंस को समझना भी बहुत जरूरी है। तो आपने बहुत अच्छा, ये भी एक पर्यावरण का हिस्सा है जो नॉइस है, एयर के अलावा, वाटर के अलावा,
0: जी।
1: तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और हमें जो एक्टिविटीज जो है ना बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, कई लोगों को शौक होता है कि अपनी मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल के जो है ना गाड़ियां चलाते हैं, या कई जगह, कई शहरों में अभी भी इंडस्ट्रीज जो है ना वो शहर के बीचों बीच होती है, तो उसकी बड़ी आवाजें होती हैं, तो वो सब और जो व्हीकल्स होती हैं उसकी आवाज तो होती ही है, तो ये नॉइज का भी जो है ना इम्पोर्टेंट है।
0: जी, इस विषय पर आगे और चर्चा करेंगे। अभी एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी, आपका स्वागत है, अपना नाम बताएं सर।
2: हाँ मैडम, मैंने पहले बात किया रघुवीर जी, फिर मैं दोबारा डॉक्टर साहब से एक थोड़ा क्वेश्चन का
0: बताएं।
2: जो उसको मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से ना।
0: जी
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, सवाल करें।
1: हाँ मैं सुन रहा हूँ।
2: हाँ, मैं जो वो आपने कहा कि जो ये प्लास्टिक की बोतल के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना, तो थोड़ा सा मैं पहाड़ में रहता हूँ, इधर उत्तराखंड का हूँ मैं, तो जैसे मतलब मैं किताबी बातें नहीं कर रहा हूँ, अब जैसे मतलब ये है कि जैसे पन्नी है, जैसे ये बोतल है या प्लास्टिक के जो कोई और जैसे मतलब जो यूज नहीं होते हैं, तो ये क्या होते हैं कि बरसात में नदी में चल बह जाते हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं? समुद्र में। जब ये समुद्र में जाएंगे तो जीव जो वहाँ के जो उसमें जीव हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। अब दूसरी बात, आपने बोला डॉक्टर साहब कि ये जो प्लास्टिक को जो कलेक्ट करने का काम या इसको, ये तो आम सब लोगों का काम है, हम सब लोगों का। अब जब मैं अपने ऊपर की बात करता हूँ कि मैं जो प्लास्टिक इकट्ठा करूंगा तो उसको जलाने से नुकसान है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ डॉक्टर साहब?
1: तो दो, आपने दो बातें कही। एक तो ये है कि जो जो भी चीज जैसे प्लास्टिक पानी में जाता है, या पेस्टिसाइड्स पानी में जाते हैं, या एक्सक्रीटा पानी में जाते हैं, एक तो पानी का प्रदूषण होता है, वही पानी कल्टीवेशन के लिए भी यूज होता है, वही पानी जो फिश होती है, जो मछली वगैरह जो है वो भी उसको यूज करती है, तो फिर आज जो लोग फिश खाते हैं तो वो प्रदूषित फिश खाते हैं। तो इसका फार रीचिंग इम्प्लीकेशन होते हैं, तो जरूरी है कि ये जो अभी जो यमुना और नदियां हमारी प्रदूषित हो गई हैं, इसका सिर्फ विजुअल वो नहीं है कि वो गंदी लगती है, उसका बहुत सारा इम्पैक्ट है, क्योंकि वो ही पानी पिया जाता है, चाहे वो प्यूरीफाई करते हैं लेकिन उसके प्यूरीफायर में ये सब माइक्रो प्लास्टिक वगैरह प्यूरीफाई नहीं हो पाते हैं, इसलिए उसका जो है ना वो पूरा ध्यान रखना चाहिए।
0: जी बताएं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी इन्होंने जिक्र किया, तो इन्होंने नदी का भी जिक्र किया, तो जो नदियों में पॉल्यूशन हो रहा है उसका कितना असर पड़ सकता है लोगों पर?
1: नहीं, बहुत असर पड़ता है, वही मैंने बोला, जो नदियां बहती हैं उसके उसमें लोग जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसको कहते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती है वो उसका वेस्ट जो है ना वो सेफ उनके लिए बहुत सस्ता होता है कि उसमें बहा देते हैं, और सब लोग उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा भी होता है, सब कुछ होता है, यूरिन भी पास करते हैं उसमें, क्या क्या नहीं करते, तो ये सब

0: नदियों का प्रदूषण, ये पानी कहाँ जाता है? ये मछलियां इस्तेमाल करती हैं, यही पानी कल्टीवेशन के लिए भी यूज होता है, जिससे सब्जियां उगाते हैं लोग, फल उगाते हैं, और फिर यही पानी जो है वो सो कॉल्ड प्यूरीफाई करके वो पीने के लिए जो हमारे नलों में आता है,
1: जी
0: तो प्यूरिफिकेशन में कुछ चीजें तो साफ हो जाती हैं, जैसे माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये पूरी साफ नहीं हो पाती, हालांकि वो बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं, इन्फेक्शन फ्री हो जाते हैं, पैरासाइट फ्री हो जाते हैं,
1: जी
0: तो वो हर चीज उस जो हमारे प्रेजेंट इक्विपमेंट है वो प्योरीफाई नहीं होते, तो इसलिए ये पानी हर जगह जाता है, खाने में जाता है, हमारे पीने के लिए जाता है, तो नदियों को साफ
1: स्वच्छ
0: रखना,
1: बनाए रखना हमारी
0: स्वच्छ
1: जिम्मेदारी
0: बनाए
1: है। जी
0: रखना, तो बात वहीं पे आ जाती है अनुराधा जी,
1: जी
0: कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने का जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है,
1: जी
0: हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हर चीज ऐसी करें जिससे कि पर्यावरण पे, हमें व्यक्ति विशेष पे असर पड़े वो एक अलग बात है, लेकिन अगर पर्यावरण खराब होगा तो नुकसान तो सबको होता है।
1: सबको होता है जी, क्योंकि हम
0: हाँ,
1: कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं वो कड़ी आके वापस हमसे जुड़
0: और न
1: जाती है
0: सिर्फ
1: अगर हम ध्यान न
0: ये
1: रखें।
0: जनरेशनल होता है,
1: जी बिल्कुल।
0: जेनेटिक चेंजेस भी आते हैं, फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, स्पर्म की क्वालिटी पे असर पड़ता है, फीमेल की जो आज आप देख रहे हो IVF हर जगह दुकानें खुली हुई है, नेचुरल वो ये फर्टिलिटी पे भी
1: असर
0: पर्यावरण का
1: होता
0: इफेक्ट
1: है जी
0: पड़ता है,
1: जी डॉक्टर
0: तो
1: साहब,
0: ये
1: हमारे एक श्रोता हैं, वो मैसेज कर रहे हैं गैंगटोक सिक्किम से। इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, फिर भी ये जानना चाहते हैं कि लोगों की कम से कम पांच कुछ ऐसा बताएं जो लोगों की जिम्मेदारी बने पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए।
0: तो रिपीटेशन होगा अनुराधा जी, जो
1: जी
0: सबसे पहली बात तो ये है
1: जी
0: कि
1: अगर संक्षेप में कहना चाहें
0: हाँ
1: इनकी बात को
0: हाँ
1: रखते हुए।
0: संक्षेप में, जैसे आप स्कूटर की जगह साइकिल चलाएं या
1: जी
0: कार पूलिंग कर लें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट करें, ये सबसे एक तो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एयर पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, सब आदमी अपने घर पे जिसको सुविधा हो वो पेड़ उगाएं। तीसरी
1: जी
0: बात ये है कि आप जो है ना, जो जो
1: सर,
0: आपका
1: इंडोर
0: कचरा,
1: प्लांट्स भी कितना असर करते हैं आजकल देखा जाता है कि किचन गार्डनिंग होती है और इंडोर प्लांट्स लगाते हैं, क्या उसका भी स्वास्थ्य पर अच्छा असर होता है?
0: इंडोर प्लांट्स का जो है मिनिमल इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इन कुछ प्लांट्स ऐसे देखे गए हैं कि जो कि एयर को थोड़ा प्यूरिफाई करते हैं, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण बहुत ज्यादा
1: नहीं है। जी
0: हमारे
1: जी
0: पास नहीं है, तो कोई ये ना सोचे कि दो प्लांट आपने अपने लिविंग रूम में या जिसको ड्राइंग रूम में लगा दिए तो आपकी हवा स्वस्थ हो जाएगी,
1: जी ऐसा नहीं है।
0: वो बिल्कुल नहीं है।
1: जी
0: उसके अलावा जो है, आप जब सामान खरीदने जाते हैं तो रीयूजेबल बैग जो है ना हमेशा यूज करें, और उसके अलावा जो है आप जो बाहर जो बेकार की चीजों को जला देते हैं उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी सर्दी हो तो आदमी कुछ लकड़ी वकड़ी जला के, कागज जला के हाथ सेकते हैं, वो टायर भी जला देते हैं, कुछ भी तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कागज का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, बिजली को बचाना चाहिए अपने घर में, अगर ऐसे नहीं कि बिल, बिजली का बिल ठीक है आता है, लेकिन बिजली वो जैसे मैंने कहा कि तो बिजली आती कहाँ से है, वो कोयले से आती है, तो इसलिए बिजली का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं पांच की
1: ध्यान
0: जगह
1: रखना
0: दस बता सकता
1: होगा
0: हूँ
1: जी, लेकिन
0: कि
1: ध्यान
0: दस।
1: हमें खुद को रखना है। ये बात लगातार हम लोगों को बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्कार
1: नमस्कार सर, शुभ नाम बताएं अपना।
2: मोटर साहब को भी नमस्कार, मैं रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ उत्तराखंड से। मैं
1: जी बताएं।
2: ये पूछा था डॉक्टर साहब से कि जैसे कि पर्यावरण में जैसे कि हमें कोई ऐसे इक्विपमेंट मिलते हैं कि हम जैसे हवा की शुद्धता नाप सके, जैसे हम तो सांस ले ही रहे हैं पर हमें क्या पता कि हवा दूषित है या प्रदूषित है।
1: जी
0: तो ठाकुर साहब, नापने के तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन अब जो हमारी जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है,

0: पहले जब मैंने ये रिसर्च शुरू करी थी 1991 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, तो बहुत थोड़े मॉनिटरिंग स्टेशन होते थे कुछ ही शहरों में, जो है ना जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मॉनिटरिंग होती है, PM 2.5 भी बहुत कम मॉनिटर होता था। लेकिन अब तो हर शहर में हर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है और वो वेबसाइट पे मौजूद भी होता है। जो छोटे छोटे जो मशीनें होती हैं जो कि बाजार में मिलती हैं AQI नापने की, वो इतनी रिलायबल नहीं होती है, उस पर आपको नहीं जाना चाहिए। और जो जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो वेबसाइट पे या पब्लिकली जाता है वो ज्यादा रिलायबल होती है एयर पॉल्यूशन मेजर करने के लिए।
1: जी डॉक्टर साहब, आज का जो जीवन है उसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, सभी की अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं, ऐसे में पर्यावरण से जुड़ाव कैसे हो और कितना लाभकारी होगा उनके लिए?
0: नहीं, सबके लिए लाभकारी होगा। जो पिछले एक घंटे में हमने जो बातें करी हैं वो बहुत अहम है। और दूसरा लास्ट में मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई ये ना सोचे कि वायु प्रदूषण सिर्फ दिल्ली NCR की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ही ज्यादा हाईलाइट होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। अगर आप पूरे भारत के मैप को देखेंगे, इवन जो जहाँ पर समुन्द्र है जैसे मुंबई है जिसको कहते थे समुन्द्र की वजह से एयर पोल्यूशन, वहाँ भी AQI 200-300 तक पहुँचता है, और उत्तर प्रदेश की तो क्या ही बात करें। तो ये सारा कंट्री में जो वायु प्रदूषण जो नहीं भी इतना हाईलाइट होता, ये सब जगह है। तो कोई ये इम्प्रेशन ना ले कि ये दिल्ली की या नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है, ये सबकी प्रॉब्लम है। इसलिए सबको ही इसी तरफ ध्यान देना चाहिए और सबको उस तरफ कदम जो हमने थोड़ी थोड़ी बातें बताई हैं उसको ध्यान देंगे तो ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: जी, आपका कहना है कि हम सब जिम्मेदार हैं पर्यावरण को स्वस्थ बनाने के लिए या अस्वस्थ बनाने के लिए, तो हम जागरूक होंगे तभी पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। तो डॉक्टर साहब, बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता हैं उनको ज़रूर पसंद आई होगी। श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा या किस विषय पर आप रेडियो डॉक्टर में डॉक्टरों से परामर्श चाहते हैं, इसके बारे में आप अपने सुझाव अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेज सकते हैं। उसके लिए ईमेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। तो बहुत सारी आज हमने चर्चा की है डॉक्टर साहब, और चलते चलते अगर कोई संदेश आप हमारे श्रोताओं को देना चाहें।
0: नहीं, चलते चलते यही संदेश है कि नेचर को हमारी जरूरत नहीं है, हमें नेचर की जरूरत है।
1: जी,
0: हमें नेचर की जरूरत है, इसलिए उसको संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है।
1: जी,
0: और हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो ये ठीक रहेगी, नहीं तो अगर हम ये सोचेंगे कि कोई और इसको ठीक करेगा तो ये नहीं हो पाएगी। धन्यवाद,
1: बहुत ही सुंदर संदेश डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में हमारे साथ जी हमारे श्रोताओं तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, पहुंचाने के लिए और उनको जागरूक करने के लिए। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर GC खिलनानी, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन PSRI हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, जिनसे आज हमने चर्चा की विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष रूप से। उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अब चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि अपनी जिम्मेदारियों का बोध जरूर करिए, क्योंकि हम सिर्फ दोहन करते हैं प्रकृति का लेकिन उसको हम देते कुछ नहीं है। देने का प्रयास करें, सिर्फ लेने का प्रयास ना करें, और यही वजह रहेगी कि पर्यावरण स्वस्थ रह पाएगा और हम सब स्वस्थ रह पाएंगे। तो उम्मीद है कि आज आप संकल्प जरूर ले लेंगे पर्यावरण को स्वस्थ रखने का। तो अब अनुराधा को दीजिए आज का रेडियो डॉक्टर समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: जी हाँ, प्रोग्राम चल रहा है जी। हैलो जलंधर, मैं हाँ थोड़ी आर जे दोस्त सुरभी। तो इस प्रोग्राम के साडे नाल अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, आओ उन्हां दी आदतां बारे भी जानते हैं जी। हैलो,
1: हाँ जी मैडम जी, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है जी?
1: बड़ा वधिया जी।
0: कौन गल कर रहे जी?
1: हाँ जी, थैंक यू जी।
0: कौन गल कर रहे जी?
1: मेरा नाम जी चरणजीत सिंह चन्ना
0: जी, जी
1: आनंद नगर नियर मकसूदा जलंधर तो बोल रहे जी।
0: जी जी, पहला तो प्रोग्राम तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी।
1: शुक्रिया जी, ताडा भी बहुत बहुत जी।
0: जी आप अज गल कर रहे आदतां दी, तुहानू पता लग गया होना, हुण तुसीं सोच भी लिया होना मैं केड़ी आदत बोलना ते केड़ी आदत ना बोलना।
1: नहीं, जेड़ी मेरी आदत माड़ी सी जी ओदे बारे ही बोलूंगा जी।
0: अच्छा, माड़ी बारे नहीं, चंगी भी आपां जरूर सुनांगे।
1: हाँ जी ठीक है
0: जी, पहला चंगी दसो केड़ी है।
1: चंगी है या के गरीब आदमी नू मैं तंग नहीं करदा जी।
0: अच्छा जी,
1: जिथे मैं कोई बुजुर्ग जा कोई भी सड़क पार करनी हुंदी है ओनू खुद मैं पार करवाउणा जी।
0: अच्छा जी,
1: ते ओ सीटां बड़ियां दिंदे आ, मैनू बहुत अच्छा लगदा जी।
0: अच्छा जी,
1: हाँ जी।
0: ते माड़ी आदत?
1: माड़ी आदत यह है कि

हेलो हाय गुड इवनिंग नमस्कार सत श्री अकाल जी। मैं हाँ थोड़ी हाँ जो दोस्त सुरभी लह के प्रोग्राम हाजिर हो चुकी हाँ जिहदा नाम है लव यू जिंदगी। जिंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, बस शर्त यह है कि सानू इसनू ज्यों दा सही तरीका होना चाहिए है। तो अज दे इस खास सफर विच असीं गल करन जा रहे हाँ एक अजिही चीज़ बारे जिस तो बिना इंसान की जिंदगी बिल्कुल ना बेरंग है। वो चीज़ जो सानू हर रोज़ सवेरे उठन का एक मकसद दिंदी है, यानी कि साढ़े सुपने ड्रीम्स साढ़े ख्वाब। कहिंदे ना सुपने वो नहीं हुंदे जो असी सोंदे हुए देखते हाँ, सुपने तो वह हुंदे नहीं जो सानू सौ नहीं दिंदे। डॉक्टर

गलबात सी पर तू ना समझ सकी, ए साहां दी मुलाकात सी पर तू ना समझ सकी, कुछ अणछुहे जज्बात सी पर तू ना समझ सकी, साडी कल्यां दी औरात सी पर तू ना समझ सकी।

जी हाँ दोस्तों, अगर यही हस के दिल कितने मुंडा मंग ले ना, तो फिर कुड़ी छड़ के चपेड़ी मार दी है। जी हाँ, क्योंकि ना कुड़ी कहती है, ओए तू कितना कहता मैनू इदा, तेरी हिम्मत किदा हुई मैनू इदा कह दी। कहते अच्छा, मैं सुने कहते ना बाकी देशों दी छोड़ी प्रदेश है जिहड़ी कुड़ियां ने बाकी अलग अलग स्टेट्स दे विच, ते ओ कुड़िया कहते घट गुस्सा कर दी। कहते पंजाबी कुड़ी नू कह के देख लो, और सीधा ही ना मुँह ते बोल दी, जाके मुँह ते बोल के सीधा जवाब दे देती है। फिर अगला बंदा सोचता रह जाता कि पंगा ले लिया। ता ही तो बाकी जिहड़े स्टेट वाले मुंडे पंजाबी कुड़ियां ने पंगा घट ही लेंदे है। सो इतना थोड़ी जी वैसी गल हो गई नॉर्मल जी। तो हूँ मैं तैनू एक जोक सुना रही जो मेरे दिमाग दे विच आ रहे, तो मैं बड़ा ही ज़्यादा वेट कर रही सी कि कदों मैं ये जोक तुहानू फटाफट सुनावा, ते इस जोक नू सुना के फिर मैं तुहानू सारयां नू हसावा। जी दोस्तों, एक बार पता की होंदा है, की होंदा भला? एक बार होंदा है जी, एक हसबेंड होंदा है, ओ ना गूगल ते कुछ सर्च कर रहा होंदा है। हुन देखो हसबेंड है, गूगल ते की सर्च करेगा ये तुसी हुन आप ही आइडिया ला लो कि वह की सर्च कर रहा होना है। वह गूगल ते सर्च कर रहा सी कि पत्नी नू किवें काबू किया जाए, अपनी वाइफ नू मैं किवें अपने कंट्रोल दे विच करा। ये वो चीज़ होगी जिहदा जवाब शायद किसी कोल भी नहीं है, तो फिलहाल फिर भी वो जो हसबेंड सी ना कोशिश कर रहा सी गूगल ते लभण दी। वो दोस्त ने कहा, अच्छा फिर की होया, कोई तरीका लभ्या कि नहीं लभ्या? पति ने पता की कहा, कहिंदा नहीं यार, गूगल ने ना जवाब ही दिता है। उन्हें कहा, साढ़े कोल खुद दे सर्वर डाउन हो जाते ने, मेहरबानी करके अपनी जान खतरे विच ना पाओ। इस करके उन्हें कहा कि ये जिहड़ा खतरे वाला सवाल है, इस करके खतरा मोल ना लवो, जिहड़ा सवाल तुसीं कीता है वह बिल्कुल ही गलत है। क्यों? जनानी नू कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। मैनू लगता कुछ लोग तो सहमत हो गए होने ने, पर कई दिन मजबूरी हो जाती है जनानियों ने घुमाना फिराना खुश करना, भावें दिल करे ना करे फिर भी ये सारा कुछ करते हैं। देखो मैं नहीं कह रही कि इदा नहीं करना चाहिए, एज अ गर्ल मैनू लगता है तुहानू इदा करना चाहिए है। देखो कुड़ियों खुश करना चाहिए, कुड़ियों खुश करोगे ना तो है तरक्या कहते बहुत होंदिया ने, तरक्की करने का तरीका होंगे कुड़ियों खुश करा, जो तो सूट मंगे लिया दया करो यार, कुछ नहीं हो चला। तुसी हुण ये ना कहियो कि मैं तुहानू गलत सलाह दे रही हाँ। नहीं नहीं हसबेंड वाइफ की नोकझोंक ना होंदी चल होंदी रहिंदी है। देखो रिश्ता भी तो ही कायम हुंदा जो इस रिश्ते विच कुछ चटपटी गल्लां हुंदियां रहन, छोटी मोटी नोकझोंक हुंदी रहे। इन्हां नोकझोंक दे विच फिर बहुत सारी गल्लां निकल के आउंदियां ने, है ना। तो एक बार ना एक होर जिहड़ा ना मैनू याद आ गया एक होर जोक। तो एक बार की हुंदा, पत्नी जिहड़ी ना कहिंदी है, कहिंदे कि ना तुसी ना विआह तो पहला मैनू कहिंदे सी कि मैं तुहानू परी वर्गी लगती हाँ। ए ना बहुत वड्डा झूठ है जो मैनू लगता बड़े सारे हसबेंड अपनी वाइफ नू बोलते हैं। पर ना ये झूठ जिहड़ियां कुड़ियां ना बड़ी छेती फड़ लैंदियां ने कि तुसी उन्हें ये झूठ बोल के हटे हो। इहदे एक ना वाइफ सीगी, उन्हें अपने हसबेंड नू कहता कि तुसी ना विआह तो पहला मैनू कहिंदे सी कि मैं ना तैनू परियां वांग लगती हाँ, मतलब कुड़ी परियां वांग लगती है। फिर कहती हूँ की हो गया, हूँ नहीं मैं परिया वर्गी लगती, हूँ तुम मेरे वाल देखते दे नहीं हो, मैनू कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, होया की है? बेचारे ना हसबेंड ने कहा कि क्या होएगा भला, चलो तुम अपने दिमाग ला के सोच ही लो कि उन्हें की क्या होएगा, 2 मिनट ला लो सोच लो। सोच लिया, कोई गल आई, बड़िया सारी गल्ला बड़े सारे हसबेंड के मन में आ भी गई होनी है कि पहला परी लगती से हूँ परी क्यों नहीं लगती। हूँ ये मैं बिल्कुल नहीं कहना कि हूँ चुड़ेल लगती है, ये मैं नहीं सोचा, ये बड़े सारे इतने जिहड़े जेंट्स है ना जिहड़े मैनु इस टाइम सुन रहे हैं उन्होंने दिमाग दे विच ये गल आ गई होनी है। नहीं जी नहीं, बिल्कुल चुड़ैल नहीं लगदियां गियां। फिर ना पति ने ना जवाब दिता पत्नी नू इसी गल दा, उन्हें कहा भागवान ने उदो ना मेरिया अखा ते कैमरा फिल्टर लग्या होया सीगा, हुण पता की हो गया, हुण विआह तो बाद हकीकत दा लेंस जिहड़ा ना उह साफ हो गया होया। कहिंदा मतलब की है दा? ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੈਂਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈਂਸ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੈਂਸ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ।

सो दोस्तों देखो, अजकल ना स्नैपचैट के फिल्टर भी बड़े सारे आ गए हैं। इन्हें स्नैपचैट फिल्टर के विच किसी की खूबसूरती नूं पछाणना भी मुश्किल हो जाता है। ये रियलिटी है कि तुसी सोशल मीडिया दे जाके चैक कर लो, तुहानूं ज़्यादातर फिल्टर वाली फोटो लभनगियां, पर रियलिटी दे विच तुसी देखोगे ना तो तुसी ना उत्थे ही भज के वापस आ जाओगे, क्योंकि ना कईआं ने तां अपना पूरा रंग ही चिट्टा कर लिया हुंदा है। रंग कुछ भी नहीं हुंदा, चिट्टा कर लें। देखो मैं रंग का फर्क नहीं इत्थे कर रही, सारे अपने अपने रंग है, तो सारे रंग बड़े सोहने हुंदे आ, फिर भी असीं पता नहीं क्यों शर्मा जांदे आ कि अपने रंग नूं छुपाण लग जांदे आ। सो ये छोटी मोटी नोक छोक जी हसबैंड वाइफ की होंगी रही है, छोटे जे जोक जोड़े भी चलते रहते हैं, तो बस फिर की है जी, हूँ तुसी इंजॉय करो गैरी सुंदर का वो गाना जिहड़ा सारे बंदियां लिए है। किहड़ा भला? बंदा बन जा दिला दे आ जानिया, मैं तेरे नवे आई हुई हाँ। बड़ा सोच के गैरी ने गाना लिखा है जी, उन्हें पूरी फीलिंग समझी है कुड़ियाँ की। मैं हूँ ज़्यादा नहीं कहूँगी, तुसी खुद ही गाना इंजॉय करो।

जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है लव यू जिंदगी। प्रोग्राम विच आज बड़ी खास गल हो रही है किंग ऑफ पेश से, यानी कि दीदार सिंह गिल होना दी। गल की मैं कि उन्होंने इतने जमीन खरीदी अमेरिका के, दैन उत्थे पीच न उगाया यानी कि आड़ू की फसल की। यह सफ़र बहुत मुश्किल से, खेतीबाड़ी विच हमेशा जोखम हुंदा है। कई बार खराब मौसम, बेवकती मीह या फसलों की बीमारी कारण उन्होंने भारी नुकसान झलना पैंदा है। तो एक समा अजिहा भी आया जदों लगता सी कि सब कुछ जिहड़ा है ना वो ख़त्म हो गया या बर्बाद हो जाएगा, पर पंजाबी फलसफा चढ़दी कला उन्होंने अंदर वसया होया सी। उन्होंने हार मनन की बजाय ना दुगनी मेहनत नाल दोबारा काम शुरू किया। उन्होंने आड़ूआ की अजिही किस्म तैयार की जो बेहतर अते लंबे समय तक खराब नहीं होंगी। हौली हौली की हुंदा है दोस्तों कि दीदार सिंह गिल दे ना बागा दा दायरा जिहड़ा ना वधदा गया, उहदे बाग बहुत ज़्यादा हो गए। कुछ सालों विच ही वह कैलिफोर्निया के सब तो वड्डे आड़ू उत्पादक बन गए। उन्होंने खेतों विच पैदा होने वाले आड़ू पूरे अमेरिका के सुपर मार्केटों विच सप्लाई होने लगे से। अमरीकी मीडिया अते उत्थों दी सरकार ने उन्हां दी इस कामयाबी नूं देखदे होए उन्हां नूं अधिकारत तौर ते पीच किंग दा खिताब दिता सी। वह अमेरिका दे खेतीबाड़ी खेतर विच सब तो प्रभावशाली व्यक्तियों विचों एक बन गए। जी हाँ, यह है दोस्तों असली मिसाल कुछ करन दी, जज्बा साबित करन दा कि बहुत कुछ हो सकता है जदों दुनिया कवे कुछ नहीं हो सकता। दीदार सिंह गिल की जिंदगी हर उस व्यक्ति लिए एक मिसाल है जो अपने सुपने पूरे करना चाहता है। सो दीदार सिंह ने अमेरिका जाके कोई नवा काम नहीं लभ्या से, बल्कि उसे खेतीबाड़ी नूं चुनिया जो पंजाब की रूह है। अपनी मूल काबिलियत नूं पछानना ही सफलता की पहली पौड़ी है। सो एक दिहाड़ीदार मजदूर तो सफ़र शुरू करके किंग बनना यह सिखाउंदा है कि शुरुआत भावें किन्नी भी छोटी होवे, तुहाडी सोच अते मेहनत वड्डी होनी चाहीदी है। पंजाबी सभ्याचार सानू मुश्किलों विच भी हसदे रहना अते अगे वधना सिखाउंदा है। नुकसान होने ते भी हार ना मनना ही उन्हां दी सब तो वड्डी ताकत सी। सो अनजान देश, अनजान भाषा अते बिना किसी सिफारिश दे सिर्फ अपने किरदार दे नाल उन्होंने इन्ना वड्डा मुकाम हासिल किया जो शायद उन्होंने भी कदी नहीं सोचा होना। उन्होंने ये नहीं सोचा सीगा कि वो इत्थों तक पहुँच जाएंगे, पर उन्होंने ये जरूर सोचा सी कि जिंदगी विच जरूर कुछ करेंगे। सो दोस्तों, सिट्टा बस यही निकलता इस कहानी का कि दीदार सिंह गिल की यह असल कहानी साबित करती है कि पंजाबी जिथे भी जाते हैं अपनी मेहनत नाल उस धरती को सोना बना देंगे। उन्होंने ना सिर्फ अमेरिका विच करोड़ों का कारोबार खड़ा किया, बल्कि उत्थे जाके सिखा ते पंजाबियों का मान सम्मान भी बताया। यह कहानी अज के नौजवानों को प्रेरणा देती है कि जेकर इरादे नेक होन अते मेहनत सच्ची होवे तो दुनिया का कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एप्रीकोट आड़ू की फसल करना कोई सोच नहीं सकता, मुझे लगता आम चीज़ है, बट उन्होंने सोचा। दीदार सिंह गिल एक आम इंसान तो बहुत खास इंसान बने, इस करके तुसी भी अपनी जिंदगी विच आम इंसान तो बहुत खास इंसान बन सकते हो जे तुसी चाहो। तो लाइफ दे विच मुश्किलों नूं ज़्यादा अपने ते हैवी ना होन दवो, तुसी खुद मुश्किलों च हैवी हो जाओ तो मुश्किलों भी सोचने लगे यार किहो जिहा बंदा है, हार ही नहीं मानता, यह तो मेरे तो डरदा ही नहीं है। बस ये होंदी ना गल, फिर गल बनती इसी तरीके दे नाल है जो असी कुछ करते हैं। अपने नाल हुण मैं तुहाडे सारिआं दीआं गल्लां जो आपां कीतीआं या यादां जो जो समां असी बिताया वो लैके जा रही हूँ मैं भी, क्योंकि मैं भी बहुत सारा मोटिवेट हुई हूँ तुहाडे सारिआं तों। उम्मीद करदी हाँ कि तुसी भी मेरे नाल जुड़ के मेरे प्रोग्राम्स नूं इंजॉय कीता होएगा और अपनी जिंदगी विच कुछ बदलाव लिए जरूर सोचा होएगा, खास तौर पर आदतों वाली गल। जी हाँ, अपनी आदतों को जरूर सुधारिया होएगा, इस करके तुसी अपनी जिंदगी विच हमेशा अपने आप नूं प्यार करते रहो। सैल्फ लव करना बहुत जरूरी है, खुद नूं प्यार करना। सब तो पहले शुरुआत करो चंगी सेहत तो, जे थोड़ी चंगी सेहत होएगी ना फिर तुसी कुछ भी हासिल

कर सकते हो, हर एक चीज़ तुसी हासिल कर सकते हो, चाहे वो जड़ी मर्जी होवे, हर सपना पूरा हो सकता है, पर चंगी सेहत पहला जरूरी है। फिर अपने आप नूं प्यार करो, अपनी हॉबीज नूं पूरा करो, हर एक छोटी मोटी चीज़ जो तुहानूं खुशी दिंदी ओह करो, अपने आप नूं खुश पहला रखो, फिर दूजिआं नूं खुश करन दे बारे सोचिआ करो। इस करके गर्मियां दा मौसम है, मैं पहला भी कहा सी, अपना ध्यान जरूर रखो। अगर तुसी हाले तक आड़ू नहीं खाधा ना, जाके पहला आड़ू खा लो क्योंकि किंग पीच किंग तुहानूं पता है ना, फिर मैंने आड़ू कैलिफोर्निया दे विच अमेरिका विच उगा दिते, तो फिर सोचो फिर साडा तां टेस्ट करना बनता है ना। गर्मी दे मौसम दे विच वैसे बड़ा चंगा हुंदा, पर हाँ ज़्यादा ना खाइओ, एक ही खाली हुई बहुत है, गर्म भी बड़े होंगे। सो हुण तुहाडी दोस्त जिहड़ी ना अज सुरभी जा रही है, दिल तो मेरा नहीं कर रहा, पर अगले आर जे पहुँच चुके ने जी अपने शो नूं लै के, वह भी फिर अपने नाल तुहाडे नाल बड़ियां सारियां गल्लां करनगे, वधिया वधिया, उन्हां नूं भी इंजॉय करियो। हुण मैनू सुरभी नूं इजाजत दो जी, रब रखा, हमेशा हसते रहो ते मुस्कुराते रहो। जाते जाते मैं एक बड़ा ही घेंट जिहा गाना लगा के चली हाँ, जरूर इंजॉय करियो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज गुजरात दे सूरत विच सड़क बिजली अते उद्योगी खेत्र नाल संबंधित 18,800 करोड़ तो वध दे कई विकास प्रोजेक्टा दा उद्घाटन किया अते नींह पत्थर रख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत दी डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा तेजी नाल वध रही है। अज विश्व वातावरण दिवस मौके उपराष्ट्रपति अते प्रधानमंत्री वल्लों देशवासियां नूं वातावरण सुरक्षा पायदार जीवन शैली अते जैव विभिन्नता दी संभाल प्रति अपनी वचनबद्धता नूं मजबूत करन दी अपील कीती। पंजाब समेत देश भर विच समागमां दा आयोजन कीता गया। पंजाब दे राजपाल अते चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने देश व्यापी मुहिम एक पेड़ माँ के नाम तहत पंजाब लोक भवन विखे बूटे लगाने की मुहिम की अगवाई की। केंद्रीय राज मंत्री जतिंदर सिंह ने जम्मू विच नवे स्थापित खेतरी मौसम विभाग केंद्र का उद्घाटन किया। राज्यसभा मेंबर संत बलबीर सिंह सिचीवाल ने जलंधर विच सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो सोदे हुए पानी नाल सिंचाई करन संबंधी प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्तीय साल विच मुख व्याज दरां नूं बरकरार रख्या। रैपो दर नूं 5.25% उत्ते बनाई रखण दा कीता फैसला। पंजाब राज महिला कमिश्नर ने लुधियाना विच 9 कुड़ियां दे लापता होण दीआं रिपोर्टां दा अपने पद्धर उत्ते नोटिस लिया। पुलिस तो जांच दी 8 जून तक वेरवे समेत रिपोर्ट मंगी गई। सीबीआई दी मोहाली अदालत ने करोड़ां दे बैंक धोखाधड़ी मामले विच एक व्यक्ति नूं 3 साल दी सख्त कैद दी सजा सुनाई। पंजाब पुलिस वल्लों विदेशी दहशतगर्दी समूह दे 2 साथियां नूं गिरफ्तार करन तो 1 दिन बाद अज 4 होर मुलजमां नूं 5 पिस्तौलां 1 किलो तो वध हीरोइन अते 5 लाख रुपए दे ड्रग मनी नाल काबू कीता। पंजाब विच अमृतसर पठानकोट कौमी शाहराह उत्ते अज सवेरे वापरे एक सड़क हादसे विच इको परिवार दे 2 व्यक्तियां दी मौत 14 जख्मी। अते नॉर्वे शतरंज दे 9वें दौर विच प्रज्ञानदा रमेश बाबू ने भारत दे ही विश्व चैंपियन डी गुकेश नूं हरा के अपनी खिताबी दावेदारी बरकरार रखी। इस घंटे दे FM न्यूज़ हेडलाइंस। न्यूज़ हेडलाइंस दा अगला प्रसारण तुसी सुनोगे रात 8 बजे। हुण तो कुछ चिरां दे इंतजार तो बाद दोस्तों तुसी सुनोगे प्रोग्राम फिल्मी दुनिया।

अपमान 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जंद का रेनबो चैनल है। मैं कह जी चेहरे ते मिठी जी मुस्कान दिल विच जोश प्यार ते दोवे हाथ जोड़ हाजिर है तुहाडी दोस्त साक्षी नेहा रलहन लैके प्रोग्राम फिल्मी दुनिया। मैं कह जी शुक्रवार की शाम है, शुक्रवार का भागा वाला दिन जिस दिन तुहाडे नाल मुलाकात हो रही है, गल्लां बातां रही सी, प्रोग्राम फिल्मी दुनिया रही सी।

दूर दराजे बैठे प्रोग्राम सुन रही हूँ, ऑफिस तो कॉलेज तो फ्री हो के प्रोग्राम दे विच शिरकत करन वाले सारे ही श्रोतियां दा बहुत बहुत स्वागत। मैके जी, फिल्मी दुनिया दे विच जिवें कि तुसी जानदे हो, गलबात करदे हां सी फिल्मी हस्तियां दी, सिनेमा दे नाल जुड़े ओ कुछ खास चेहरे जिन्हां ने फिल्मां नूं फिल्मां विच बहुत सारा योगदान पाया। किसे ने अपनी अदाकारी दे नाल, किसे ने अपनी आवाज़ दे नाल, किसे ने अपनी कलम दे नाल, ते किसे ने इस सब नूं पिरोया एक फिल्म दे रूप विच, जिन्हां नूं असीं डायरेक्टर भी कहिंदे आ। ते अज फिल्मी दुनिया प्रोग्राम विच जिन्हां हस्तियां बारे, जिन्हां खास विषयां उत्ते मैं तुहाडे नाल गल करांगी, उस बारे तुहानू दसदे हां। दोस्तों, अज सब तो पहला असीं गलबात करांगे बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर ते एक्टर मुकेश भट्ट दी। मुकेश भट्ट दा जीवन किवें शुरू होया, किस तरह फिल्मां दे विच आना होया, ते किस तरह हिंदी सिनेमा दे शिखर ते पहुंचे, सब जानांगे। इस दे नाल ही नाल अज गलबात करांगे पंजाबी सिनेमा दी। इस फिल्मी एक्सप्रेस दे विच जिथे तुसी बैठे हो अपनी दोस्त नेहा रलन दे नाल, अज तुहानू पंजाबी सिनेमा दा शुरुआती दौर दी सैर करवावांगे, ते नाल ही जानांगे कि किस तरह फिल्मां दी पंजाबी सिनेमा ने शुरुआत कीती, किस तरह ये निखरदा निखरदा अज हरमन प्यारे सिनेमा बन चुका है। बहुत सारिया गल्लां बातें करनी है, ते मैं कह जी कि जल्दी शाम का वेला, तो जल्दी जल्दी चाह की कप अपने टेबल ते रख लो, ते नाल भुजिया नमकीन बिस्किट लैके बैठ जाओ। मुकेश भट्ट की गल करिए दोस्तों, मुकेश भट्ट साहब का अज दे ही दिन यानी कि 5 जून 1952 नूं मुंबई दे विच जन्म होया। एक गुजराती घराने तो संबंध रखते ने, इन्हों का फिल्मा प्रति प्यार ते जनून उन्होंने विरासत विच मिलिया सी। विरासत विच किवें मिलिया सी, की कहानी है इस पिछे, जानांगे जानांगे। पर दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, तो मैं कह जी प्रोग्राम की शुरुआत बिना गीत तो अधूरी जी लगती है, तो लो जी फिर पेश करते हैं तुहाडे वास्ते इस प्रोग्राम का पहला गीत के दी आवाज़ दे विच।

हाँ जी दोस्तों, प्रोग्राम फिल्मी दुनिया सुन रहे तुसी ते के दी आवाज दे विच क्रू मूवी दा एक गीत सुनिया, बड़ा ही प्यारा, जो मेरे दिल दे जज्बात भी बयान कर रहा सी अपने श्रोतिया वास्ते। दोस्तों मुकेश भट्ट साहब दी गलबात कर रहे हैं, जिन्हां दा अज हैप्पी वाला बर्थडे है, पर इस तो भी ज्यादा इंपोर्टेंट है हिंदी सिनेमा दे विच उन्हां दा योगदान। बॉलीवुड दे मशहूर फिल्म डायरेक्टर ते एक्टर वजो मशहूर मुकेश भट्ट। दोस्तों इन्हां दे जीवन दी जेकर गल करिए ते इन्हां दे पिता नाना भाई भट्ट दी तीजी संतान सी, जो अपने समय विच यानी नाना भाई भट्ट दी गल करिए अपने समय दे एक मशहूर डायरेक्टर ते प्रोड्यूसर सी, जिन्हां ने बहुत सारियां हिंदी उस दे नाल ही नाल गुजराती फिल्मां दे विच अपना योगदान पाया। ते मुकेश दी माता जी दी गल करिए तां उन्हां दी माता जी इंडियन क्लासिकल प्लेबैक सिंगर सी, नां ऐसी हेमलता। इस तरह समझ सकते हैं कि फिल्मां दे ते संगीत प्रति मुकेश दा जिहड़ा झुकाव सी ओह ते लाजमी सी। पिता ते अपने वड्डे भरा यानी महेश भट्ट दे नक्शे कदम ते चलदिआं मुकेश ने फिल्मां दे विच ही करियर बनाउण दी सोची। दोवां भरावां ने मिलके 1986 दे विच एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई जिस दा नां रख्या विशेष फिल्म्स। ते लगभग 30 सालां तक दोनां भरावां ने इस बैनर हेठ कई सारियां फिल्मां दा निर्देशन कीता।

जारी रहेगी। तो इस गलबात ही बताते हुए चलते हैं अपने अगले दोस्त वाल। हैलो हैलो, मैं क्या जी अगले दोस्त का भी साढ़े तक जड़ा फोन नहीं पहुंच पाया, हालांकि इन्होंने भी फोन मिलाया सी बड़ी दूरों, पर चलो कोई गल नहीं, एक गीत सुन लेने। मैं क्या जी अमरिंदर गिल की आवाज़ के तद तक बाकी दोस्तों वास्ते मैं नंबर एक बार फिर दोहरा दिनी हाँ। नंबर है जी 01 81 23 42 174 01 81 23 42 174। तो आ जाओ जी फिर करते हैं गल्लां बातां इस कुदरत बारे, वातावरण बारे, जिस दी होंद नाल ही साड़ी होंद है।

0: दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO दे अकॉर्डिंग जे इस दे अनुसार गल करिए तो दुनिया की 99% आबादी जिहड़ी है वो प्रदूषित हवा विच साह लैंदी है। भारत की गल करिए तो भारत विच हर साल 12 लाख तो भी ज़्यादा जिहड़ियां है मौतां दा कारण सिर्फ एयर पोल्यूशन यानी कि हवा प्रदूषण है। हेलो
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार जी, कौन ते किथों जनाब?
1: मैडम जी मैं पॉल बोल रहा हूं, सराबा नगर जलंधर तो।
0: जी पॉल जी, प्रोग्राम

दोस्तों प्रोग्राम सुन रहे हो तुसी जिसका नाम है जी पब्लिक मंच, जिस विच गलबात कर रहे हां जिसे वातावरण नू संभाल करन दी इस कुदरत नू जड़ा है लिशकारन दी सवारन दी, क्योंकि इस तो इलावा किते गुजारा नहीं है। दोस्तों जेकर असी स्टैट्स दे अकॉर्डिंग गल करिए तां बहुत सारियां चीज़ां ने जो सानूं हैरान भी करदियां ने ते परेशान भी करदियां ने। जिवें गल करिए PM 2.5, ओह कण जो कि साडे वालां तो 30 गुणा बरीक हुंदे ने ते सिद्धे खून विच चले जांदे ने, इस वातावरण दे विच मौजूद हुंदे ने ए PM 2.5। इस दे नाल ही नाल दोस्तों जेकर असी गल करिए दरखत लगान दी, ते एक दरखत जड़ा है साल विच 22 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखदा है ते 4 जणियां लई ऑक्सीजन दिंदा है। सोचो एक दरखत जेकर 22 किलो कार्बन डाइऑक्साइड जड़ा है

0: दोस्तों कहिंदे दुनिया दे विच जिहड़ा असी हर एक चीज़ जिहड़ी है प्लास्टिक दे विच वरतों करन लग पए हां। ये प्लास्टिक दी बोतल दी जेकर गल करिए इस नूं गलन विच 450 साल लगते ने, ते भारत हर रोज़ 1.5 लाख टन जिहड़ा है प्लास्टिक का ही कचरा जिहड़ा है पैदा कर रहा है, ते जिस विचों सिर्फ 30% प्लास्टिक है जिस नूं रीसाइकल किया जा सकता है, ते बाकी इंज ही जमीन वातावरण को खराब करता है, प्रदूषित करता है। प्रोग्राम दे विच कुछ ही समा बाकी है, तो कोशिश करांगे जिन्हां कॉल्स जिन्हें दोस्तों नाल गल हो सके ज्यादा तो ज्यादा करन दी। हेलो जी, नमस्कार जी, कौन गल कर रहे जी?
1: मैं रोशन लाल तिलकनगर जी देवनगर नाल
0: जी। रोशन जी, प्रोग्राम दे विच जुड़े गल असी हुणे कीती प्लास्टिक दी।
1: जी,
0: प्लास्टिक दी लगातार वधदी गिनती नूं रोकण वास्ते की कोई सुझाव है? इस प्लास्टिक नूं किस तरह असी दुरवरतों विच लिया सकदे हां, या की कुछ इसदा कर सकदे हां कि वातावरण नूं इह घट प्रभावित करे?
1: देखो आपां इह कह सकदे हां वी जिहड़े ना प्लास्टिक आ
0: जी,
1: कोई भी आपां सुक्का गिल्ला आपां जिहदा आपां कोई ਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬਾਹਰ
0: ਜੀ,
1: ਟੱਪ ਟੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਆਂਦਾ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਸਲੀਪਰ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਊਗਾ
0: ਜੀ।
1: ਤੇ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
0: ਜੀ,
1: ਤੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
0: जी। तुसी इत्थे एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिता कि जिहड़ा कचरा है उसनूं अलग अलग करन दी बहुत बहुत जरूरत है
1: जी, जी,
0: जी। सुका ते गिला कचरा ते
1: जी करोगे अपने आप ही उन नाल जक ले जाना
0: जी।
1: हां जी, ए आपा जे बसाई लोगे आपा इदा करांगे
0: जी,
1: ते जरूर इदा कम होगा
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, ए पॉइंट साडे

नाल साझा करने वास्ते बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों इन्होंने तो दस दिता, इन्हों के नाल होर भी बहुत सारे दोस्त जोड़े अज साडे नाल प्रोग्राम दे विच जुड़े, अपने अपने उन्होंने सुझाव अपने अपने विचार जोड़े है वातावरण लैके रुख लगान वास्ते या हवा न साफ बनाने वास्ते पानी बारे बहुत सारिया गलां बातां कीतियां। ਇੱਥੇ ਅਮਜ਼ਦ ਇਸਲਾਮ ਅਮਜ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਝੇ ਜੀਨੇ ਕਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਸਾਫ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਟਿਕ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਆਸਮਾਨ ਫਲਕ ਭਰੇ ਆਸਮਾਨ, ਔਰ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਮੁਝੇ ਮੇਰੇ ਜੀਨੇ ਕਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਏ। हर एक इंसान का हक है साफ हवा, साफ धरती, साफ पानी, तो इसनों साफ बनाने का जिम्मा भी साड़ा ही है, क्योंकि इन सारिया ही चीज़ा मिलके ही जड़ा है इंसान की जड़ी है सब तो मुख जड़ी जरूरत हैं जीन दियाँ वो पूरिया होंदिया, इन्हों बिना जिंदगी जड़ी है मुकम्मल नहीं हो सकती। तो विश्व वातावरण दिवस से आओ कोशिश करते हाँ कि इसनों छोटिया छोटिया चीज़ा जिमें कि प्लास्टिक की घट्ट तो घट वरतों करनी, इसनों रीयूज करना, इस दे नाल ही घर दी विच जिहड़ी टूटियां लगिया हुई हैं उन्हां दी समय समय ते मुरम्मत करवानी, पानी की वेस्टेज घट तो घट करनी, अजिहियां छोटिया छोटिया चीज़ा रोज़मर्रा की जिंदगी विच अपनानियां। इस दे नाल ही प्लास्टिक की गल की आखिर दे विच प्लास्टिक नू इसकी मात्रा नू घटाने वास्ते कोशिश करिए, जिथे जरूरत है कपड़े दे बने थैले ते जिहड़े दूसरे बर्तन होंदे स्टील दे बर्तन हो गए या वुडन दीयां चीज़ां इन्हां दी वरतों करिए जिथे भी आपां वरतों कर सकते होइए। तो उम्मीद करते हैं अज का प्रोग्राम पब्लिक मंच तुहानू चंगा लगा होएगा, कुछ ना कुछ सुनेहा अज के प्रोग्राम तो जरूर मिलिया होएगा। इस नाल ही मैनू यानी कि अपनी दोस्त आरजे नेहा रलहनू दियो इजाजत, मिलेंगे तुहानू जल्द प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच। ते इस नाल ही प्रोग्राम का आखिरी गीत पेश करन जा रही हूं बी प्राक दी आवाज़ दे विच।

FM 102.7 megahertz se tune in kita FM rainbow dil se dil tak. नमस्कार आदाब जी आयानु प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच अपने दोस्त आज निहारल हंदिना बने हुए इस खूबसूरत प्रोग्राम जिस विच तुहाड़ियां हिंदी ते पंजाबी फिल्मा दियां फरमाइशां जड़ियां है फिल्मी गीतां दियां ओ पूरियां कीतियां जांदियां ते अज कोई गीत सुनना है किसे नू कोई सोंग डेडिकेट करना है ते जुड़ सकते हो प्रोग्राम दे विच नंबर नोट कर लो जी नंबर है जी 9855 10 10 27 इस नंबर ते तुसी सानू भेजने अपने प्यार भरे सुनेहे अपनिया फरमाइशां कि केड़ा गीत अज तुसी सुनना चाहुंदे हो ते नाल ही उस गीत दे नाल कोई अगर कहानी जुड़ी है जिंदगी बारे या कोई भी सीख या कोई भी किस्सा जो चेते आ रहा है जहन दे विच आ रहा है जरूर सांझा करना अपने दोस्त दे नाल प्रोग्राम दिल चाहता दे विच जरूर शामिल करांगे ते नंबर एक बारी फिर दोहरा देने जी 9855101027 तुहाड़े नाल प्रोग्राम राही जुड़ना गलबात करना इंज एहसास लैंदा है जिवें पहला पहला प्यार होवे

प्रोग्राम दिल चाहता है देविच अगला मैसेज साढ़े तक पहुंचाया है। पिंड पंचायत कालेगांव जाफराबाद तो श्री सुधाकर राजे जादव, डॉक्टर प्रशांत कुमार संचित, प्रथमेश प्रणाली सरवद सानवी ते कल्पना, पूरे दे पूरे देशमुख परिवार का बहुत शुक्रिया। फरमाइश है जी, नदी फिल्म प्रेम बंधन गायक लता मंगेशकर ते किशोर कुमार की आवाज विच मैं तेरे प्यार में पाशा। अगला मैसेज पिंड नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान तो वेद मिड्डा अलका मिड्डा जी सप्रेम नमस्कार लिख के भेज रहे ने। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो मेहर अरोड़ा ममता अरोड़ा कीर्ति ते भूमिका प्रोग्राम का आनंद मान रहे ने ते मैसेज राही प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। इस नाल ही सैक्टर 60 मोहाली चंडीगढ़ तो टीडी मल्होत्रा रितिक मल्होत्रा प्रतीक अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप इन्हां दे नाल ही कालका तो शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज बहुत शुक्रिया इन्हां सारे ही दोस्तों का। एक होर मैसेज साढ़े तक पहुंचा है रिस्पैक्टेड होस्ट जी किसी भी सदाबहार गीत दे विच शामिल किया जाए नाम पिंड नथाणा तो पंजाब तो मैसेज आया जी हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता ते गीता ते नाल ही सुनेहा दिंदे ने खुशियां वंडन दा खुश रहन दा।

हाँ जी, FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते ट्यून इन कीता है तुसी अपना पसंदीदा प्रोग्राम FM रेनबो चैनल ते, जो इस टाइम सुन रहे हो, जिसका नाम है दिल चाहता है। ते दिल चांद है अज रात हिंदी ते पंजाबी फिल्मा दे गीत तुहाडी फरमाइशां पूरी करन वास्ते स्टूडियो दे विच हाजिर हाँ मैं, यानी कि तुहाडे दोस्त आरशी निहारल हन। ते इस दे नाल ही मैं कह जी स्क्रीन वल छाती मार लैनी आ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इंतजार कर रहे ने कि कद उन्हां दा नाम जिहड़ा है उन्हां दी फरमाइश प्रोग्राम दे विच शामिल कीती जाएगी। ब्लैकमेल फिल्म दे गीत दी फरमाइश लैके हाजिर होए ने करणवीर सिंह पोल ते पूरा पोल परिवार सराबा नगर जलंधर तो। इस नाल ही मजनू का टिल्ला तो साडे नाल जुड़े ने कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर सतना मध्य प्रदेश तो। इन्हां दे ही साथी उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक ते माही मलिक। ते लो जी फिर पेश है जी किशोर कुमार की आवाज़ एवरग्रीन सॉन्ग।

बिल्कुल जी, पल पल दिल दे पास रहंदे यार, आकाशवाणी जुंद दे स्पेशली एफएम रेनबो दे सारे ही सिरोते प्रोग्राम चल रहा जी, तुहाडा पसंदीदा दिल चाहता है। ते दिल केड़े हिंदी जो पंजाबी फिल्मी गीत अज सुनन दा कर रहा है दसो छेती। नंबर है जी 98-55-10-10-27। ते बस फिर आ जाओ जल्दी अपने मैसेजेस अपनी फरमाइशां लेके। पिंड वड़िंग खेड़ा जिला श्री मुकतसर साहिब तो ही एक होर मैसेज आया जी, भोला सिंह सिद्धू लाडी धालीवाल ते जलंधर तो मास्टर मोहन लाल शौकी अरविंद कुमार जी लिखते ने, प्रोग्राम पेश करता जी बहुत ही प्यारा ते सत्कार भरी जड़ी है, सत श्री अकाल कबूल करो जी। ते इस नाल ही लिखते ने किसी भी गीत दे विच नाम शामिल किया जाए। तो लो जी तुहाडी अर्जी जड़ी है पहुँच गई है साढ़े तक। इस नाल ही यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र तो संतोष खड़से ते विनोद खड़से मैसेज कर रहे हैं। पिंड हीरावली जिला फजिलका तो पक्के स्रोते सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा प्रोग्राम का हिस्सा बने ने। ते नाल ही नाल एक होर मैसेज जो साढ़े तक पहुंचा है उसनों भी शामिल कर लें जी।

सप्रेम नमस्कार। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ तो सड़क तक पहुंची ते पहुंचाने वाले ने महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी ते दिशा गोस्वामी। हर वार दी तरह लिख रहे ने माई रेडियो माई लाइफ। ते लो जी फिर इन्हां सारे ही दोस्तों की रली मिली पसंद ते सुनते हाँ फिल्म खूबसूरत दा ए गीत। ते गीत नूं आवाज़ दित्ती है कुमार सानू ते कविता कृष्णा मूर्ति ने।

बिल्कुल जी, जिंदगी जो है दो लफ्जों की है, शुक्राना ते शुक्राना। प्रोग्राम दिल चाहता है सुन रहे तुसी अपने दोस्त आज ने हर रन दे नाल बने हुए हो। प्रोग्राम दे विच दोस्तों ने हाजिरी लगाई है जी, दूरों दूरों बहुत सारे अज मैसेजेस जड़े ने साढ़े तक पहुँचे है, तो कोशिश यही रहेगी ज़्यादा तो ज़्यादा जड़े मैसेजेस प्रोग्राम दे विच शामिल किए जा। इस लड़ी दे विच सादुल शहर राजस्थान तो राम कुमार रिवाड़ चंद्रकला रिवाड़ मैसेज आया जी इन्हों का। सीमा मित्तल भार्गव नगर जलंधर तो शिरकत कर रहे ने, ते इन्हां दे नाल ही पिंड तेजा मोड़ी से तो बंछी लाल संधु मोहन प्यारे हेयर ड्रैसर ते निशा जी जिहड़े है, नहीं इन्होंने निशा जी नूं गुड नाइट भेजी है। मैं कहा जी निशा जी अज प्रोग्राम दे विच नहीं आए, प्रोग्राम दे विच नेहा जी आए ने, ते तो पता चल रहा कि तुहानूं नींद आई हुई है, प्रोग्राम सुन नहीं रहे ध्यान नाल। पर चलो जी कोई गल नहीं, प्रोग्राम दे विच शिरकत करने वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज आया जी राजस्थान विक्रम कडवासरा सचिन कडवासरा का, सतीश कडवासरा योगेश ते युद्ध मलोट कैंप पंजाब तो सतीश मिगलानी सीमा मिगलानी विवान मिगलानी पूरा मिगलानी परिवार शुक्रिया। पिंड खारिया जिला सिरसा हरियाणा तो प्रताप जिनागल इंदिरा मुकेश दिनेश अंशु बलदेव कटारिया इन्हों का भी शुक्रिया करते हाँ, तो दिलो धन्यवादी हाँ असी बारासा परिवार विनोद बारासा विशाल विकास रोशनी शगुन का जिन्होंने पिंड खोखरा वाली श्री गंगानगर तो सानू याद किया है। पिंड कुम्हारहेड़ा सहारनपुर तो सैयद मसरूर शाइना हसन अफसा नाजिया आफिया इब्राहिम सद्दाम ते अदीब का मैसेज आया है, किसी भी सौंग दे विच फरमाइश इन्होंने की है जी किसी विच शामिल किया जाए, तो हर वर की तरह धीमान परिवार फिर जुड़ चुका है। कुरुक्षेत्र तो यशपाल धीमान कृष्णा राहुल शुभम प्रियंका आंचल कुंज प्रवीण चिराग रजत राजेश ते लिखते ने, प्रोग्राम बहुत वधिया है ते आनंद लै रहे ने पूरा प्रोग्राम का, बहुत शुक्रिया है जी। तुहाडे इस मैसेजेस ने मेरे अंदर भी एक आनंद की जिहड़ी है लहर उछला दिती है। ते जनाली पिंड बुरज हनुमानगढ़ तो नेड़े मंडी अरनीवाला जिला फजिलका तो अमन वर्मा रमन दिव्याम ते मैं कह जी प्रोग्राम दे विच एक बार ही मैसेज करिया करो, एक बार इन्हों का पहला भी मैसेज आया तो दोबारा फिर इन्होंने प्रोग्राम च मैसेज किया। चलो कोई नहीं अगले मैसेजेस वल वधदे हां, तो उम्मीद रहेगी एक बार मैसेज

दोस्तों प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच नमस्कार लिखे भेजी है पिंड ढिड्डाखाना निमानाबाद नेड़े सफीदो मंडी जिला जिंद हरियाणा तो जसबीर सिंह अरोड़ा जतिंदर कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत ते करमजीत कौर ते बहुत बहुत शुक्रिया जी इन्हां दा ते इन्हां दे नाल ही आदर्श नगर मलोट पंजाब तो राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरव साइना निवान दा मैसेज आया जी पिंड नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब तो बालकृष्ण प्रवीण मुनीश राहुल जी ने मैसेज राही शिरकत की है श्रोता नसबगढ़ जय विहार तो शाहरुख फारूक शबनम ते शहनाज इस नाल ही नाल श्रोता रघुवीर नगर तो दिलावर खान हसीना बानो एलिजा नायब ते लड्डू का मैसेज आया जी एक होर मैसेज साढ़े तक पहुंचे गांधी चौंक बाड़मेर राजस्थान तो बबलेश पवार डैनी पवार मनीष पवार राम देवरा तो दिनेश चौहान डांगरी तो बाबू राम जयपाल ते खलीफो की बावड़ी तो खुदा बख्श खलीफा बहुत बहुत शुक्रिया तो करते ही हैं इस नाल ही कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जोड़ा ते सिटी दीवाना प्रोग्राम का हिस्सा बने ते मोहाली पंजाब तो बबल मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा राम सिंहपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो अशोक बब्बर पवन राजेश अजय राहुल मनु बब्बर बोधराज खोरवाल कमला रानी गीतिका खोरवाल

भानु प्रकाश, कृतिका रामकृष्ण, गोपालगढ़ राजस्थान तो धर्मेंद्र छिंपा, कपिल ते पूजा परिहर। इन्हां दे नाल ही रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह। नमस्कार लिख के भेजिए जी सानू एक जलंधर कैंट तो कस्तूरबा नगर के रहने वाले अनीता, दिव्यांका, प्रक्षित, अनमोल डलहोजी तो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं। पहाड़ा तो मैसेज आया जी, रजक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान। इस नाल ही सुखदेव सिंह, नरेंद्र कौर, सन्नी मुन्नी, काका बिट्टू, लाडी मोहन, मास्टर जनक नगर जलंधर तो, कुलदीप सिंह, सुखमन दीप, पिंड लद्दियां खुर्द लुधियाना तो मैसेज कर रहे हैं। सत श्रीकाल लिखे भेजे जी उन्होंने। नमस्कार कर रहे हैं जी वी पी ओ कोटली, थान सिंह जलंधर तो, मिंटू चंदेल, जिला हिसार तो, राजकुमार डुडी, प्रमोद कुमार ते पुष्पेंद्र कुमार रिंगनी छत्तीसगढ़ के, दिनेश ते करुणा वर्मा का शुक्रिया। इस नाल ही प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच पिंड कल्याण मलका, जिला बठिंडा तो, अमृतपाल सिंह रामगढ़िया, परविंदर सचनूर ते मनिंदर जी का भी मैसेज पहुंचया। ते इस दे नाल ही नाल एक होर मैसेज साढ़े तक पहुंचाया है जी, लगभग सारे ही दोस्तों का जिन्होंने प्रोग्राम दे विच शिरकत की, मैसेज भेजे, सारे दे ही कोशिश यही रही कि नाम जड़े है जरूर शामिल किए जान। तो उम्मीद करते हैं अज का प्रोग्राम तुहानू सारयां नू खूब पसंद आया होएगा। तो इंज ही प्रोग्राम दे नाल जुड़े रहो, तो जिन्हां दोस्तों की अज फरमाइश नहीं पूरी की गई उन्हां दी फरमाइश किसी ना किसी प्रोग्राम दे विच जरूर पूरी की जाएगी। पर अपना साथ, अपना प्यार इसी तरह साढ़े नाल सांझा करते रहना। तो बहुत बहुत शुक्रिया अज वास्ते, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तो सुनते रहो एफ एम रेनबो, दिल से दिल तक। हुण मैं तुहानू मिलांगी प्रोग्राम शामे गजल दे विच, तद तक बदला जट्टी दा फिल्म दा एक गीत सुनो सरबजीत कौर दी आवाज़ दे विच।

नमस्कार, आदाब, आफरीन। एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जिंदे दा एफएम रेनबो चैनल ट्यूनिंग कीता है तुसी अपने दोस्त आरजे निहारल दे नाल। सारे ही दोस्तों का प्रोग्राम दे विच निघा स्वागत करते हाँ, इस्तकबाल करते हाँ। शामे गजल खास एक प्रोग्राम जिस विच गल्लां कर महसूस

याद पे किसका बस है, इस दुनिया में कौन है जो अपनी याद को रोक सकता है। ये तो बिन बिताए चली आती है बस, सूरज का डलना तो यूं ही बहाना है। सच पूछो तो हमें तो दिन में भी याद आती है उन हाथों की, जो हाथों से आंखों से दूर हो गए। प्रोग्राम शामी गजल सुन रहे हो अपने दोस्त आरजे निहारल हनेना। दोस्तों लोग पूछते ने कि उन्हों इन्ना याद क्यों कर दिया, उन्हों इन्ना याद क्यों कर दिया, पर यादा ते किसे दा वास्ता नहीं हुंदा। ते लोकां दे इन्हां सवालां ते इवन इंशा लिखते ने, कुछ कहने का वक्त नहीं ये कुछ ना कहो खामोश रहो, ए लोगों खामोश रहो, हाँ ए लोगों खामोश रहो, सच अच्छा पर उसके जिलों में जहर का है एक प्याला भी, पागल हो क्यों ना हक को सुकरात बनो खामोश बनो। प्रोग्राम में अगली गजल तुहाड़ी पेशे खिदमत जगजीत सिंह की आवाज़ दे विच।

दुनिया के सवालों से, शोर से मन यही चाहता है कि कुछ देर खामोश बैठो। खामोशी में

क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब होते हैं। याद दी गल कर रहे हाँ प्रोग्राम शामी गजल दे विच। कहिंदे जद रात दी तन्हाई, जद रात दी तन्हाई दिल विच उदासी पैदा करे, बहुत ज़्यादा उदासी, ते दिल किसे एक खास वास्ते ही तुहाडी दिल दी धड़कन चो सुर निकलन सरगम निकले। तद बशीर बद्र साहब इस ते लिखदे ने, जब रात की तन्हाई दिल बन के तड़कती है, यादों के दरीचों में चिलमन सी सरकती है, लोबान में चिंगारी जैसे कोई रख जाए, यूं याद तेरी शब भर सीने में सुलगती है, जाने ये मुझको क्या हो रहा है। भूपिंदर सिंह की आवाज़ एक गज़ल तुहाड़े पेशे खिदमत करन जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं तुहानू पसंद आएगी।

किसी दी याद आना, बहुत याद आना एक नेचुरल प्रोसेस है, पर जरूरी है इस याद दे विच भी खुद नूं समेटी रखना। मुश्किल है क्योंकि जी बिखरन नूं करदा है, पर जे इस कमजोर वक्त जे खुद नूं समेट लिया तो जिंदगी दे बेशुमार खजाने इंसान दी चोली पैंदे ने। बशीर बद्र साहब दी एक बड़ी मशहूर गजल है, लिखदे ने, कुछ यादों के मौसम होते हैं, कुछ यादों के साए होते हैं, तुम अक्सर जिनको भूल गए वो कितने प्यारे होते हैं, उन आँखों को मत भूल जाना जिनमें कुछ ख्वाब पुराने हो, कुछ टूटते हुए रिश्तों के, कुछ शहरे दिल वीराने हो। प्रोग्राम शामे गजल दिविच समा आ गया है तुहाडे तो इजाजत लैन दा, पर इजाजत लैन तो पहला तुहाडे वास्ते पेश करन जा रही हां जगजीत सिंह ते चित्रा सिंह दी आवाज दे विच ए प्यारी खूबसूरत गजल। क्योंकि याद जिन्नी मर्जी आए आखिर दे विच मन विच सिर्फ इक्को ख्याल हुंदा है कि काश एक दिन दो दिन फिर मिलन जिंदगी विच मुलाकात दी, ते उदन दिल दे हर इक चा पूरे कर लिए। इस नाल ही मैनू अपने दोस्त आज नेहरल नू दियो इजाजत ते आनंद मानो जगजीत सिंह ते चित्रा सिंह दी आवाज़ दे विच ए गजल।

तुमको पाकर भी ना कम हो सके, तुमको पाकर भी ना कम हो सकी बेताबी ये दिल, इतना आसान तेरे इश्क का गम था ही नहीं।

0: उसकी गली से एक बार जो गए वापस मुड़ना मुश्किल था, पर जो बुलाए वो एक बार प्यार से तो वापस मुड़ना इतना भी मुश्किल ना था।
1: अरे अरे रुक जा।

रुक जाओ ना जी, दिल कहता है रुक जाओ ना जी, मगर जो नैलिया लिखते हैं कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको बाते होंगे। हर किसी की पसंद होना बहुत मुश्किल है, इस पसंद विच पसंद का होना बहुत मुश्किल है।

दोस्तों प्रोग्राम सुन रही हूँ, एक प्यार का नगमा है। एक खास प्रोग्राम जिस विच गल्लां बातां ते घट हुंदियां पर गीतां दी लड़ी जड़ी है, नगमा जड़ा है, गीतां दी महफिल चलदी रहिंदी है। ते इस महफिल दे विच हुण गल्लबात करिए। याद ते गल हो गई, बुलान ते गल होगी, उसदे शहर दी भी गल होगी। गल करिए हुण, शहर उसदे बुलाया है ते जाना भी ते पैणा। दोस्तों किसी दी याद बड़ी ही खास हुंदी है। जद कोई बुलाए, दिलों बुलाए, तो चाहे इंसान जिथे भी होए, वो अपने आप अपने प्यार, अपने महबूब, अपने हम सफर कोल पहुंच ही जाता है। प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है विच चलन की गल हुई है, महबूब कोल जान की गल हुई है। तो सुनते हैं जी लता मंगेशकर की आवाज़ विच ये गीत। गीत दे बोल ने चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था।

0: एक प्यार का नगमा है। प्रोग्राम सुन रहे हो तुसी, बने हुए अपनी दोस्त आरजे निहार अलहन दे नाल। गीता दी इस महफिल दे विच गलबात हुई, गीत भी सुने, ते जांदे जांदे जद याद अपने उच्च लैवल ते पहुंच जांदी है तां तो दीवानगी विच बदल जांदी है। ते इस ते निदा फाजली साहब दी बहुत खूबसूरत निदा फाजली जी लिखदी ने, तू इस तरह से तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। हर एक रंग तेरे रूप की झलक ले ले, कोई हंसी कोई लहजा कोई महक ले ले। ये आसमान ये तारे ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से, मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी। खुदा करे ये दीवानगी रहे बाकी। जद दीवानगी दी स्टेज विच कोई पहुंच जाता है तो उसनू हर किते रंग ही रंग नज़र आते ने, हर किते उस दी बनाई सोनप उस दी बनाई सोनी कुदरत नज़र आती है। प्रोग्राम दा आखिरी नगमा तुहाडे लिख पेश करन जा रही हैं। उम्मीद करते हाँ मुकेश दी आवाज़ दे विच तुहानू प्रोग्राम दा आखिरी गीत खूब पसंद आएगा। तो इस दे नाल ही अपने दोस्त आरजे निहार अलहन वालों हुण दियो इजाजत। तो इस दे नाल ही गीत तुहाडे वास्ते रेडियो सेट से
1: मैंने